मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी वाराणसी है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ हो रही है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं, अब दिल्ली केंद्र से समाचार दिए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय

0: बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश 4थे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:05 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में मिर्च की खेती विषय पर किसान भाइयों को जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम मिर्चा की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। समय चल रहा है, आप इसकी पहले नर्सरी तैयार करें और फिर मुख्य खेत में रोपाई करें। LCA 235, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, जवाहर मिर्च 218, ये सब इसकी उन्नतशील प्रजातियां हैं। संकर किस्मों को भी बो सकते हैं, जैसे तेजस्विनी प्रजाति है, आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी अच्छी प्रजाति के बीज उपलब्ध करा रही हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी अच्छी पाई गई है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच हो, मिर्चा की खेती के लिए उपयुक्त होती है। मिर्चा की खेती के लिए खेत की 2-3 बार जुताई करके, पाटा चला करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं। 1 हेक्टेयर खेत में अगर नर्सरी तैयार करना है तो 600 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इससे जो पौ तैयार होगी उससे 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई की जा सकेगी। इसकी नर्सरी के लिए जो क्यारियां बनाते हैं उसके लिए ये जरूरी है कि मिट्टी जीवांश युक्त हो, यानी कि उसमें गोबर की खाद या सड़ी हुई कंपोस्ट की खाद अच्छी तरह से मिलाकर तैयार की जाए। जब क्यारियां बनाते हैं तो यह ध्यान रहे क्यारियों की लंबाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 1 मीटर होनी चाहिए। प्रति वर्ग मीटर

0: की दर से 10 ग्राम डाई अमोनियम फास्फेट और 1 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद मिला करके नर्सरी अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं। क्यारियां जमीन की सतह से 20 से 25 सेंटीमीटर उठी हुई हों। यह ध्यान रहे कि जो बुआई करें तो वो अधिक घनी नहीं होनी चाहिए, पंक्ति से पंक्ति की अगर बुआई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कहने का मतलब ये कि लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन बना करके और फिर इन्हीं लाइनों पर मिर्चा की बुआई करते हैं। बीज की बुआई के बाद क्यारियों को सड़ी हुई गोबर की खाद या पत्ती की खाद, कंपोस्ट खाद से ढक देते हैं, जिससे ऊपर की मिट्टी बैठने न पाए। तत्पश्चात फुहारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अब इन क्यारियों को धूप व ठंड से बचाने के लिए घास फूस की छप्पर से ढक देना चाहिए। जब बीज पूर्णतया जम जाए तो घास फूस हटा लेना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार फुहारे से हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। हाँ, अगर बारिश होती है तो सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से लगभग 4 सप्ताह में पौध रोपाई के योग्य हो जाती है। रोपाई करने के लिए मुख्य खेत को तैयार करने हेतु सबसे पहले 250 से 300 कुंटल खूब सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिला देते हैं। इसके बाद फिर तत्व के रूप में 100 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये कि लगभग 200 किलोग्राम यूरिया, 240 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 60 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा व फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा रोपाई से पहले ही खेत में मिला देना चाहिए तथा शेष जो नाइट्रोजन बचती है उसे 2 बराबर भागों में बांट करके पहली मात्रा रोपण से 25 दिन बाद और फिर जो शेष मात्रा बचती है उसे 45 दिन बाद खड़ी फसल में बुरकाव करना चाहिए। पौध रोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करना जरूरी है, उसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। मिर्च की फसल में पानी की मात्रा, मिट्टी की किस्म, क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा और उगाई जाने वाली किस्म पर निर्भर करती है। यदि वर्षा कम हो रही है तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। गर्मी के महीनों में सिंचाई 1 सप्ताह के अंतराल पर करना चाहिए। ध्यान रहे वर्षा का पानी खेत में ज़्यादा समय तक नहीं लगे रहना चाहिए, अन्यथा पौधे मर जाते हैं। अतः जैसे ही खेत में ज़्यादा पानी लग जाए तो उसकी निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर मिर्चा की खेती करनी चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में मिर्च की खेती विषय पर अभी किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी वाराणसी है। 6:10 हुए हैं। निवेदित हैं भक्ति रचनाएं आराधना के अंतर्गत। प्रभु श्री राम हम सभी के जीवन में अपार खुशियां लाएं, जीवन पथ सरल और सुगम हो।

सेवा भाव से मन की शुद्धि होती है और पवित्र मन में ईश्वर का वास होता है। इस ईश्वर की जय जयकार से ही प्राणियों के मन में लेश मात्र भी भय नहीं रहता।

श्याम सलोने नटखट नटवर नागर कन्हैया की मुरली की धुन, इसकी तान हमारे अंतस्तल को झनकृत और प्रफुल्लित कर दे, भाव विभोर कर दे।

0: इसी देवी गीत के साथ ही आराधना अब यहीं संपन्न हुई। इसमें जिन गायक कलाकारों ने अपने स्वर दिए थे वो थे लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मनहर उदास और मालिनी अवस्थी। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी वाराणसी है। आइए सुने विचार बिंदु। आज का विषय है भाव भजन और साधन।
1: साधन भजन का अभ्यास हर कोई अपने जीवन में करना चाहता है ताकि वो भगवान से जुड़ा रहे, वो धर्म के मार्ग पर चले और अपने जीवन को सार्थक कर सके। लेकिन साधन भजन करने से जो लाभ व्यक्ति को होना चाहिए वो हो नहीं पाता, केवल कर्म कांड रह जाते हैं और उसके भाव रस के आनंद से व्यक्ति वंचित रह जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति का साधन भजन और मंत्र जाप आदि करने में मन नहीं लगता, इनको करने से मन भागता है। ये सब करने के लिए मन को बहुत मनाना पड़ता है और जबरदस्ती व्यक्ति को अपना मन लगाना पड़ता है। दरअसल साधन भजन एक माध्यम है जिसके द्वारा हम स्वयं के प्रति एकाग्र होते हैं, अपने विचारों और भावनाओं का परिष्कार करते हैं, मन को धोते हैं और भगवान से जुड़ने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। भगवान से व्यक्ति का जुड़ना जरूरी है क्योंकि भगवान हमारी आत्मा के मूल स्रोत हैं। जिस तरह हमारा अपना कोई स्नेही परिजन हमसे बिछड़ जाता है तो उसके मन में ये कसक होती है कि कितनी तीव्रता से वो अपने परिवार वालों से मिल जाए। भगवान भी हमारी प्रतीक्षा में हैं, वो हमारी प्रेम पूर्ण भावनाओं के भूखे हैं, हर संभव सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। लेकिन हम उनसे जुड़े नहीं हैं, इसलिए उनकी सहायता के स्वरूप को समझ नहीं पाते। उनके द्वारा की गई सहायताएं हमें व्यर्थ प्रतीत होती हैं, कष्टकारक लगती हैं। इस संसार में यदि हमें भगवान की ओर जाना है तो धार्मिक जीवन को अपनाना होगा, साधन भजन का अभ्यास करना होगा। साधन भजन मंत्र जप तो बहुत लोग करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन उसका लाभ और उस कार्य में आनंद उन्हीं लोगों को मिलेगा जो उसे अपने अंदर आत्मसात करेंगे। यदि ये साधन भजन आंतरिक गहराई के साथ किए जाएं, इन कार्यों में डूबा जाए, भावनाओं का संपुट लगाया जाए तो ये ऐसे कार्य करेगा जैसे किसी मधुर रस का पान किया गया हो, फिर इस कार्य में भी आनंद आने लगेगा। कार्य वही उत्तम ढंग से हो पाता है जो एकाग्रता और आनंद के साथ किया जाए। आधे अधूरे मन से किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। मन को मारकर भी काम किया जा सकता है, लेकिन वो अल्प समय के लिए ही साथ देता है। यदि लंबे समय तक किसी साधना का अभ्यास करना है और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना है

0: उस कार्य में आनंद पैदा करना होगा। यह आनंद तभी पैदा होगा जब उस कार्य का अभ्यास पूरी तन्मयता के साथ किया जाए, आंतरिक भावनाओं से महसूस किया जाए, उसमें अपने मन को लगा दिया जाए। हम सभी यदि अपने जीवन में थोड़ा समय मन के साथ किए गए साधन, भजन, जप आदि को दे सकें, तो हम इस संसार में चाहे जितना भी भटकें, लौटकर सही दिशा में स्वतः ही आ जाएंगे।
1: आप सुन रहे थे विचार बिंदु। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज का विषय है पेट संबंधित रोग, कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजेश पांडेय।
2: मैं डॉक्टर राजेश कुमार पांडे और आज स्वास्थ्य चर्चा में हमारा विषय है पेट संबंधी रोग, कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार। यदि आपके पेट में गैस बनने लगती है, पेट में भारीपन होता है, खट्टी डकार आती है, सीने में जलन होती है, शरीर में आलस्य बना रहता है, भोजन करने का मन नहीं करता है, जब ऐसे लक्षण शरीर में उत्पन्न होने लगे तो थोड़ा आपको सावधान हो जाना चाहिए और अपने पेट की सुननी चाहिए। आपका पेट इन लक्षणों के माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि आप जो पेट में डाल रहे हैं वह ठीक नहीं है, उसे कम करें या उसे ठीक करें। और बस थोड़ा भोजन कम करके, दो चार दिन सुपाच्य खिचड़ी का हल्का आहार लेकर के या थोड़ा उपवास करके इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। जब हमारा भोजन ठीक प्रकार से नहीं पचता तो पेट में आम नामक विषाक्त पदार्थ बनने लगता है। आयुर्वेद में कहा गया है आमो अपक्वो मलह, यानी आम अपक्वो मल को कहते हैं, जो हमें हमारा मल बिल्कुल सारे तत्वों को शरीर में शोषण करने के बाद मल ही निकलना चाहिए, वह आधा पका आधा कच्चा मल पेट से बाहर निकलने लगता है, इसे आम कहते हैं। यही मॉडर्न साइंस में लैक्टिक एसिड और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा पेट में बनने लगता है और ये यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में जमने लगता है और आगे चल करके हमें जोड़ों के दर्द की समस्या उत्पन्न करता है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि स्वस्थ जीवन का आधार स्वस्थ पाचन है। यदि हम संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त व्यायाम और मानसिक संतुलन बनाए रखें तो अधिकांश पेट संबंधी रोगों से बच सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे भूख लगने पर ही भोजन करें, पूर्व में किए हुए भोजन के पचने के बाद ही अगला भोजन करें, ताजा एवं गर्म भोजन करें, बासी भोजन से बचें, हल्का एवं सुपाच्य भोजन करें, भोजन अच्छी तरह चबाकर खाएं। आयुर्वेद में भोजन को 32 बार चबाकर खाने की बात कही गई है। खूब चबाकर खाने से प्रचुर मात्रा में मुंह का सलाइवा भोजन में मिल जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का पाचन अच्छी प्रकार से होता है और पेट में गैस नहीं बनती है। पानी भी खूब पीना चाहिए, परंतु भोजन के तुरंत पहले या तुरंत बाद अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद में कहा है कि अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम, भोज मध्ये चामृतम वारी भोजनांते च विषप्रदम, यानी हल्का जो पानी होता है, सुपाच्य होता है, जो वह हमारे शरीर में बल की वृद्धि करता है, और जो दूषित जल होता है वह हमें डॉक्टर के पास दौड़ाता है। हम जो बीच बीच में भोजन के बीच बीच में एक एक घोट पानी पीते हैं, यह अमृत के समान होता है, और भोजन के अंत में जो हम ढेर सारा पानी पी लेते हैं, यह विष के समान होता है। अतः भोजन के अंत में बहुत ज़्यादा पानी पीने से बचना चाहिए। पेट के पाचन को ठीक रखने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट 40 मिनट टहलना ही काफ़ी हो जाता है। योगासन और प्राणायाम भी पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, जैसे वज्रासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक माने जाते हैं। यदि अपने पेट को ठीक रखना है तो तनाव से बचें। मानसिक तनाव का सीधा प्रभाव पेट पर पड़ता है, इसलिए ध्यान, योग एवं सकारात्मक सोच अपनाएं

0: से आपका पेट और पाचन तंत्र दोनों ठीक रहेंगे। उदर रोगों की सामान्य समस्या में आयुर्वेदिक कुछ नुस्खों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सामान्य अपच, गैस या एसिडिटी होने पर भोजन के थोड़े बाद सौंफ चबाकर खाना चाहिए, इससे गैस नहीं बनती है। अदरक के छोटे टुकड़े थोड़ा सेंधा नमक मिला करके भोजन से जस्ट पहले अगर खाते हैं तो भी गैस बनने की संभावना कम हो जाती है, गैस पाचन भी अच्छा होता है और गैस कम बनती है। गुनगुना पानी भी हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, तो थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए। यदि पेट में कब्ज रहता है, शौच करने में मल कड़ा होता हो तो पानी ज़्यादा पिए, रेशेदार भोजन जैसे सलाद, हरी सब्जी, फल, स्प्राउट्स, अंकुरित मूंग आदि का ज़्यादा सेवन करें।
1: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में पेट संबंधित रोग, कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार। विशेषज्ञ थे डॉक्टर राजेश पांडे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रीराम चरितमानस से संगीतमय पाठ।

जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह का शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ सभी सगे संबंधियों सहित अयोध्या लौटे। राजकुमारों की बारात की वापसी का समाचार पाकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भेरी और शहनाई, नगाड़े और ढोल तथा शंख की मंगल ध्वनियां चारों दिशाओं में गूंजने लगीं। प्रसन्नता से झूमते नगर निवासियों ने घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों तथा नगर द्वारों को तोरण और ध्वज पताकाओं से सजाया। घर घर मंगल कलश सजाए गए। अयोध्या का ये सजा संवरा रूप देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल की रचना कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। सामूहिक उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके राजा दशरथ के महल में सर्वत्र छा गया है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज की कड़ी की गायक कलाकार थीं वाणी जयराम और उत्तरा केलकर। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आइए जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे शाम 4 बजे से। शाम 6:30 से आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रेफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जाने वाले भारत बनाम बांग्लादेश मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण होगा। ये दोनों ही कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 से, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में दोपहर 12:45 पर सुनिएगा अमरनाथ मिश्र का सितार वादन, और सुबह 7:31 पर उस्ताद वसीफुद्दीन डागर का ध्रुपद गायन। सुगम संगीत में दोपहर 12:30 पर कलाकार होंगी ममता शर्मा। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण होगा शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, मेरी पसंद, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। धरती के गीत कार्यक्रम शाम 5:00 से, आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा सिंधी गीत। कहकशां का प्रसारण होगा दिन में 2:30 से। लोक संगीत के कार्यक्रम में दिन में 1:45 पर और सुबह 9:50 पर आज की कलाकार होंगी रूबी देवी। अंगनैया कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर महिलाएं चर्चा के अलावा वार्ता सुनेंगी, विषय होगा पंचतत्व, शरीर स्वास्थ्य और संतुलन। वार्ताकार होंगे आचार्य विनोद कुमार सिंह। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:00 से। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो होगा ईमेल पर आधारित, यह कार्यक्रम हम लेकर आएंगे दिन में 11:00 से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार का प्रसारण होगा सुबह 10:00 से। मधुरिमा आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर और गुड मॉर्निंग बनारस रोज की तरह सुबह 7:00 से। फिल्म संगीत शाम 6:10 से भी सुना जा सकता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। ये थे आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार सुने

0: भविष्यति स्पर्धेयं मैनचेस्टर नगरस्य एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफोर्ड क्रीडांगणे आयोज्यते या भारतीय समयानुसारं सायंकाले सप्तवादने समारप्स्यते हरमनप्रीत कौरस्य नेतृत्वे भारतीय महिला दलं विमेन इन ब्लू संप्रति स्वसमूहे द्वितीयं स्थानं भजते इति वार्ताः
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

इज गुड वाला मॉर्निंग। क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ट्यून किया है आपने अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। बनारस सुबह का टाइम है तो कुछ सेहत से जुड़ी बातें हो जाए तो कैसा रहेगा। तो करें आज कुछ सेहत से जुड़ी बात। आपने अक्सर सुना होगा कि हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर महसूस करता है। हमारी पूरी सेहत का रास्ता ना हमारे पेट यानी के गट हेल्थ से होकर गुजरता है और आज का आधुनिक विज्ञान भी ये साबित कर चुका है कि हमारे मस्तिष्क और पेट के बीच एक गहरा संबंध है जिसे गट ब्रेन कनेक्शन कहा जाता है। यानी हमारा पाचन सिर्फ भोजन पचाने तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे सोचने की क्षमता, मूड और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, अनियमित खानपान, जंक फूड और मानसिक तनाव के कारण ज्यादातर लोग गैस, कब्ज और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम लगभग हम सब फेस करते हैं। तो इन्हीं सब समस्या को लेकर मैंने शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर से बात की और आप सब के लिए कुछ जानकारियां इकट्ठी। तो आइए जानते हैं कि स्वस्थ पेट के लिए क्या खाएं, पेट खराब होने पर क्या खाएं, पेट को स्वस्थ कैसे रखें और स्वस्थ पेट के लिए अच्छे आहार कौन से हैं। डॉक्टर के मुताबिक हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का एक बड़ा हिस्सा आंतों से जुड़ा होता है। पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया से लड़कर हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखते हैं। ऐसे में अगर आंतों का स्वास्थ्य खराब होता है तो शरीर बार बार इन्फेक्शन की चपेट में आने लगता है। तो ये कुछ 5 बेहतरीन फूड आप अपनी डाइट में शामिल करिए और हेल्दी रहिए, जिसमें पहले नंबर पे आता है दही या छाछ, क्योंकि दही को आंतों के स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभकारी खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है। ये भोजन से पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है और पेट फूलने और कब्ज जैसी प्रॉब्लम से राहत देता है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंतें बेहतर तरीके से काम करें तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदा, सफेद ब्रेड या पास्ता की जगह साबुत अनाज को प्राथमिकता दें। आंतों के सही कामकाज के लिए रोजाना कम से कम 25 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है। ओट्स, ब्राउन राइस, ज्वार, बाजरा और रागी जैसे साबुत अनाज फाइबर, विटामिन और खनिजों के अच्छे स्रोत हैं। जब आंत के बैक्टीरिया इस फाइबर को फर्मेंट करते हैं तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनते हैं जो आंतों की परत को मजबूत और स्वस्थ रखते हैं। साथ ही अदरक का उपयोग सदियों से पाचन संबंधी समस्याओं में घरेलू उपाय के रूप में किया जाता रहा है। ये पेट को अधिक कुशलता और तेजी से खाली करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। इसके नियमित सेवन से पाचक एंजाइमों का उत्पादन बढ़ता है जिससे मिचली, गैस और पेट फूलने की प्रॉब्लम से राहत मिलने में मदद मिल सकती है। और पाचन तंत्र और पेट की सेहत को बनाए रखने के लिए सिर्फ सही खाना ही काफी नहीं है बल्कि सही ड्रिंक्स का भी चुनाव करना बेहद जरूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है पानी। पेट को सुचारू रूप से चलाने के लिए पानी सबसे जरूरी तत्व है। हमें पूरे दिन सही मात्रा में पानी का सेवन करते रहना चाहिए और सिर्फ खाने पीने से नहीं बल्कि सही आदतों से भी हमारा पेट ठीक रह सकता है। जैसे खाना हमेशा धीरे धीरे और चबा कर खाइए और

भर में 3 बड़े मील की जगह 4 से 5 छोटे छोटे मील लेने का प्रयास करें और खाना खाने का एक टाइम फिक्स कर लें और मील को स्किप बिल्कुल भी मत करें। साथ ही रोजाना 20 से 30 मिनट की वॉक, हल्की स्ट्रेचिंग या योगा करें जिससे आंतों की गतिशीलता बनी रहती है। तो बस बनारस, इन्हीं कुछ टिप्स के साथ आप अपने गट हेल्थ को फिट रख सकते हैं। और साथ ही सुनिए ये ब्यूटीफुल से ट्रैक, आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।

सोलियोना आपकी वाणी आकाशवाणी मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। बनारस आज दिन है गुरुवार और तारीख है 25 जून। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है अपने शहर बनारस में खास। प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को आगे बढ़ाते हुए नगर निगम वाराणसी ने कर भुगतान व्यवस्था को पूरी तरह तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 44,382 भवन स्वामियों ने 27 करोड़ रुपए से अधिक का गृहकर, जल कर और सीवर कर जमा किया है। नगर निगम द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन और एआई आधारित सेवाओं को नागरिकों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन भुगतान के साथ साथ एआई आधारित व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा और क्यूआर कोड प्रणाली लागू की है। इस नई व्यवस्था के जरिए लोगों को निगम कार्यालयों के चक्कर लगाने और लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। नगर निगम का दावा है कि वाराणसी प्रदेश का पहला नगर निगम है जिसने संपत्ति कर भुगतान के लिए अत्याधुनिक एआई आधारित व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा शुरू की है। आंकड़ों के अनुसार यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे ऑनलाइन माध्यमों से 16,622 भवन स्वामियों ने 12 करोड़ रुपए से अधिक का कर जमा किया है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि शहर के लगभग 2,00,000 भवन स्वामियों को सरल और पारदर्शी कर भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये व्यवस्था शुरू की गई है। करदाता केवल क्यूआर कोड स्कैन करके अपने मोबाइल पर सक्रिय होने वाले व्हाट्सएप नंबर 8601872601 पर हाय भेजकर अपना डिजिटल बिल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ही मिनटों में सुरक्षित भुगतान कर रसीद डाउनलोड की जा सकती है। नगर निगम ने समय से कर जमा करने वाले नागरिकों के लिए विशेष छूट की भी घोषणा की है। 15 जुलाई तक गृहकर, जलकर और सीवर कर जमा करने पर 10% की छूट दी जा रही है। इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान करने वाले करदाताओं को 2% अतिरिक्त छूट मिलेगी जिससे कुल राहत 12% तक हो जाएगी। इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और पद्म पुरस्कार विजेताओं को गृहकर, जलकर और सीवर कर में 50% की विशेष छूट प्रदान की जा रही है। नगर आयुक्त ने बताया कि 1 अप्रैल से 6 मई के बीच कर जमा करने वाले नागरिकों की छूट राशि अगले वित्तीय वर्ष के बिल में समायोजित कर दी जाएगी। भारत की प्रथम हब और स्पोक विमान संचालन व्यवस्था के शुभारंभ से पूर्व केंद्रीय नागर विमान मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू 2 दिवसीय प्रवास पर बुधवार को काशी पहुंचे। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके आगमन पर प्रोटोकॉल प्रभारी और भाजपा किसान मोर्चा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री 25 जून को वाराणसी से दिल्ली के लिए शुरू होने जा रही देश की पहली हब और स्पोक विमान सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस नई विमान व्यवस्था को घरेलू हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है जिससे छोटे शहरों और प्रमुख एयर हब के बीच बेहतरीन कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए एयरपोर्ट परिसर में विभिन्न एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय पुलिस प्रशासन, CISF के उच्चाधिकारी और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी एजेंसियों कार्यक्रम के सफल और सुचारू संचालन को लेकर समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रही हैं। बताया जा रहा है कि वाराणसी से दिल्ली के लिए प्रारंभ होने वाली ये सेवा देश में विमान संचालन के नए मॉडल की शुरुआत करेगी जिससे यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को साइबर सेल और जनपद के सभी थानों के साइबर हेल्प डेस्क प्रभारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। समीक्षा के दौरान शिकायतों के निस्तारण में अपेक्षित प्रगति न मिलने और लापरवाही पाए जाने पर 4 उपनिरीक्षकों
को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया, जबकि 60 दिनों से अधिक समय तक विवेचनाएं लंबित रखने वाले दो विवेचकों को निलंबित कर दिया गया। बैठक में बताया गया कि 1 जनवरी 2026 से 20 जून 2026 तक साइबर फ्रॉड के मामलों में लगभग 6 करोड़ रुपए की धनराशि होल्ड

और फ्रीज कराकर पीड़ितों को राहत दिलाई गई है। इसके अलावा वर्ष 2026 में अब तक साइबर अपराधों में प्रयुक्त 3,198 मोबाइल नंबर ब्लॉक किए गए हैं और 509 मोबाइल फोन के IMEI नंबर डीएक्टिवेट किए गए हैं। साइबर शिकायतों के निस्तारण में 76% डिस्पोजल रेट हासिल होने पर पुलिस आयुक्त ने संतोष व्यक्त किया, साथ ही इसे और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। पुलिस आयुक्त ने कहा कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के प्रभावी अनुपालन के चलते शिकायतों का लियन टाइम घटकर मात्र 14 मिनट रह गया है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने अधिकारियों को इस प्रदर्शन को बनाए रखने के साथ साथ और अधिक सुधार लाने के लिए प्रेरित किया। बैठक में साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले बैंक खातों, मूल्य अकाउंट, फर्जी सिम कार्ड, संदिग्ध खाता धारकों और साइबर अपराधियों के नेटवर्क के विरुद्ध त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही प्रतिबिंब और समन्वय पोर्टल की प्रभावी मॉनिटरिंग, फर्जी POS मशीनों के खिलाफ अभियान चलाने और व्यापक साइबर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में पुलिस उपायुक्त अपराध नीतू, अपर पुलिस उपायुक्त साइबर अपराध नृपेंद्र सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। तो ये था अपने शहर बनारस का हाल समाचार, और अब इसी के साथ बनारस मेरे भी जाने का वक्त हो चला है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, आपको भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो अब गुड मॉर्निंग बनारस से दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त स्नेहा को। डडा।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत

0: कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। कहा, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में राज्यों को करना चाहिए काम। लखनऊ अग्निकांड में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और प्रदेश भर में कल से मौसम के शुष्क रहने की संभावना। पूर्वी जिलों में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में आयोजित प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित यह बहुमाध्यम मंच केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को निर्बाध रूप से एकीकृत कर सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रभावी योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने नागरिकों को ठगने के लिए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे मामलों का सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा समन्वित, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित पंजीकरण और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में LDA ने विभागीय जांच कर दोषियों को चिन्हित कर लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आग की चपेट में आई इमारत का नक्शा वर्ष 2014 में पास किया गया था। इसके बाद वर्ष 2016 में LDA ने मानकों का पालन न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संसुष्टि की गई है।
2: तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए शासन भेज दिया है। और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए।
0: अग्निकांड में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU से डिस्चार्ज कर दिया गया है। KGMU के प्रवक्ता KK सिंह ने बताया कि एक गंभीर रूप से घायल युवक की हालत भी अब स्थिर है। इस बीच प्रदेश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम द्वारा कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान लगातार जारी है। गौतमबुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि वहां जांच के दौरान 2 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया। अयोध्या में CFO महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए 2 टीमें बनाई हैं जो फायर सेफ्टी की जांच के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।
3: जो दुर्घटना हुई है लखनऊ में के क्रम में हमारे जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ फायर सर्विस में, उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई है। एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाए।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी आदि की प्रगति से अवगत

0: कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है।
1: भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।
0: भारत में ताजिकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालोन ज्यादा ने कल रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और ताजिकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। रजा लाइब्रेरी के निदेशक पुष्कर ने बताया कि ताजिकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्दी ही एक समझौता ज्ञापन MOU भी किया जाएगा।
2: तो भारत के बीच में सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग किस प्रकार का हो सकता है, उस दिशा में हमने बातचीत भी की और आने वाले समय में हम वहां के संस्थानों और रामपुर रजा पुस्तकालय के बीच में समझौता ज्ञापन करेंगे। एक विशेष बात ये आई कि कुछ ग्रंथ यहाँ पर कजाकिस्तान से सीधा संबंध रहा और वो उस स्क्रिप्ट को और उस भाषा के अध्ययन के लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब ने कहा है कि वो वहां से स्कॉलर्स हमारे यहाँ भेजेंगे जो उसका अध्ययन कर सकें। और
0: राज्य सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया, मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा
3: और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि RRTS को मुजफ्फर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। उस DPR के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान होती है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। मंडलायुक्त मेट को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो डीपीआर की तैयार होनी है, जितना हिस्सा मेट के अंदर आएगा उसका पैसा मेट का प्राधिकरण और जितना हिस्सा मुजफ्फर जनपद में आएगा उसका पैसा मुजफ्फर विकास प्राधिकरण खर्च करेगा।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
4: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मौसम विभाग ने कल से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। कहा, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में राज्यों को करना चाहिए काम। लखनऊ अग्निकांड में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और प्रदेश भर में कल से मौसम के शुष्क रहने की संभावना। पूर्वी जिलों में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुने ध्रुपद गायन। कलाकार हैं उस्ताद वसीफुद्दीन डागर, राग है अहीर भैरव। आपके साथ संगतकार हैं पखावज पर मोहन श्याम शर्मा और तानपुरा पर नफीस डागर और आशा विश्वनाथ।

0: प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत

0: के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और दो श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
1: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभिडांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
2: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप ही एक पड़ाव चयनित किया गया है।
1: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

0: उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमेरिकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देशबंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: संदेश हुआ पूरा। सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा में आपका स्वागत है।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: पहला गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, मजरूह का लिखा ये गाना है राजेश रोशन की तर्ज। फिल्म का नाम है ममता।

अब आइए सुनते हैं तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गाना। संगीत दिया है सलील चौधरी ने, फिल्म है छाया।

अब आइए सुने भाभी फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने, धुन तैयार की है चित्रगुप्त ने।

0: कार्यक्रम मधुरिमा के शेष गाने इस छोटे से अंतराल के पार।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें
5: 0542227658
6: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
0: संदेश हुआ पूरा। कार्यक्रम मधुरिमा में एक बार आपका पुनः स्वागत। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान का लिखा गाना। संगीत दिया है राजेश रोशन ने, फिल्म का नाम है याराना।

अब आइए सुनते हैं उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में समीर का लिखा गाना। आनंद बलिंद ने इसका संगीत तैयार किया है।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं आयशा भोसले की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गाना। लक्ष्मीकांत प्यारलाल ने इसकी धुन तैयार की है। फिल्म है आए दिन बहार के।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 9:15 होने को हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बस्ती और बदायूं जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित सिंह का।
1: प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूर्ण होने पर बस्ती विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बस्ती में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सर्किट हाउस में सुपोषित कार्यक्रम के अंतर्गत

0: पहुंची महिलाओं को किट वितरण किया। साथ ही साथ जिले में चल रहे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष से पूर्ण होने पर उनके द्वारा दिए गए अनेक योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 12 वर्षों का स्वर्णिम काल पूरा किया है। उनके नेतृत्व में भारत देश की तस्वीर बदली है और तकदीर भी बदली है, और एक नई सोच के साथ भारत ने एक नई दिशा की ओर बढ़ने का संकल्प लिया है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी और उन्होंने अपनी सरकार का लक्ष्य गरीब कल्याण योजनाओं के साथ शुरू किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि
1: 4,128 करोड़ रुपए की हमारी 383 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी, और इन परियोजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम चलाए गए हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद, उनको रिवाइवल के प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किए, जिसमें जो पहले 2 शुगर मिल रिवाइव किए गए।
0: बस्ती जिले में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में प्राकृतिक खेती विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश एवं देश के विभिन्न किसान, कृषि वैज्ञानिक, अधिकारियों तथा बड़ी संख्या में किसानों ने सहभाग कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने किसानों से आह्वान किया कि वे कृषि विज्ञान के तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त कर प्राकृतिक खेती को अपनाएं तथा कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग को न्यूनतम प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है बल्कि किसानों की उत्पादन लागत को कम कर उनकी आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बस्ती जिले में मुहर्रम के दौरान निगरानी के लिए 1400 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इस दौरान निकलने वाले जुलूस और मजलिसों के मद्देनजर पर्याप्त पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस क्रम में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मुहर्रम को लेकर अधिकारियों ने पीस कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में मुहर्रम को लेकर थाना क्षेत्र वासियों से सुझाव मांगा गया। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से मानक के अनुरूप संपन्न कराने की अपील किया। जिलाधिकारी कृतिका जोशा ने बताया कि
2: जनपद में लगभग 1952 ताजिए रखे जाएंगे जिनकी निगरानी के लिए 1400 के ऊपर के CCTV कैमरेज लगे हुए हैं। जुलूस की जो संख्या है वो 127 है। इसको लेकर के पुलिस की सभी ड्यूटीज लग गई है, एज वेल एज प्रशासन की ओर से भी सभी मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लग गई है।
0: बस्ती में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर असम प्रभारी और पूर्व लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी ने बस्ती स्टेडियम में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में भाग लेते हुए योगाभ्यास किया और लोगों को नियमित योग अपनाने का संदेश दिया। योग दिवस इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन के लिए योग के महत्व को समझा और नियमित योग करने का संकल्प लिया। लखनऊ में कोचिंग संस्थान की घटना के बाद बस्ती जिले के सभी कोचिंग संस्थानों में मानक की चेकिंग की जा रही है। फायर सेफ्टी समेत एंट्री और एग्जिटिंग की चेकिंग की जा रही है। जिले में भी पुलिस विभाग के साथ फायर टीम और DIOS लगातार चेकिंग कर रहे हैं। टीम ने सबसे पहले कटरा क्षेत्र के लक्ष्य एकेडमी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लगे फायर सेफ्टी एक्सपायर मिले, तत्काल ही संस्थान को फायर सेफ्टी को लेकर चेतावनी जारी की गई। मानक विहीन कोचिंग संस्थान चलाने पर अधिकारियों ने कड़ी आपत्ति जताई, साथ ही मानकों को पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए। क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने एक कोचिंग संस्थान के चालक को निर्देश दिया कि वहीं इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी ने बताया कि शासन और उच्चाधिकारियों के निर्देश पर संयुक्त टीम द्वारा कोचिंग और लाइब्रेरी सेंटरों की चेकिंग कराई जा रही है।
3: बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का।
4: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर आधारित बदायूं के डैट परिसर में आयोजित 4 दिवसीय प्रदर्शन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। जनप्रतिनिधियों, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों आदि ने सेल्फी प्वाइंट पर तस्वीरें लेकर पलों को यादगार बनाया। बदायूं जनपद के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन एवं पर्यावरण डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बीते दिनों प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में पहले दिन से ही आगंतुकों में सरकार की योजनाएं जानने के लिए भारी उत्साह देखा गया। आगंतुकों ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव से पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं में स्टार्टअप, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और निःशुल्क खाद्यान्न वितरण जैसी योजनाएं शामिल रहीं। प्रदर्शनी का आयोजन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। बदायूं स्थित कृष्णा लॉन में बदायूं से लखनऊ के लिए नई ट्रेन संचालित होने के संबंध में बीते दिनों आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि ये बदायूं जनपद की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि बदायूं से लखनऊ के लिए रेल सेवा संचालित किए जाने की मांग को लेकर वो लंबे समय

0: से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष लगातार प्रयासरत थे। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बताया,
1: आज मुझे खुशी है कि बदायूं से सीधी ट्रेन लखनऊ के लिए जनता की बहुत पुरानी डिमांड थी चलने जा रही है, इसकी स्वीकृति मिल गई और बहुत जल्दी तिथि तय करके बदायूं से हरी झंडी दिखाई जाएगी। यहां से सुबह 5:25 पर ट्रेन यहां से चलेगी और शाम को वापस भी आ जाएगी।
0: बदायूं की जिलाधिकारी अवनीश राय ने बीते दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य

0: कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन की सुगमता से सुलभ कराने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि 1 से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से माइक्रो प्लान बनाकर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने 28 जून से प्रारंभ हो रहे पल्स पोलियो अभियान के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान अंतर्गत ब्लॉक स्तर नोडल अध्यापकों का संवेदीकरण, स्थानीय निकायों पर संवेदीकरण, ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी की संवेदीकरण आदि कार्य समय पर पूर्ण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि संबंधित सभी बैठकर समय से पूर्ण कराकर अभियान को सफल बनाया जाए। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने 28 जून 2026 से पल्स पोलियो दिवस पर सभी प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को पल्स पोलियो दिवस के दिन बूथ का उद्घाटन संबंधित ग्राम प्रधान से करवाने को निर्देशित किया। बदायूं बीते दिनों राष्ट्रीय नीति 2020 के अंतर्गत सतत शिक्षण पद्धति एवं कार्य प्रणाली विषय पर एक फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य संसाधन व्यक्तियों के रूप में प्रोफेसर साजिद जमाल और डॉक्टर अहमद मुज्तबा सिद्दीकी, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अध्यापन कार्य से जुड़े हैं, ने शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों, छात्र केंद्रित शिक्षा, नवाचार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर आधारित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि व जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि योग हमें फिट रखता है और जो फिट है वही हिट है। इस अवसर पर सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, MLC प्रतिनिधि शारदेन्दु पाठक, नोडल अधिकारी व राज्य आयुक्त GST नितिन बंसल, जिलाधिकारी अवनीश राय सहित अन्य अधिकारी व आमजन आदि मौजूद रहे। योग दिवस पर योग प्रशिक्षकों ने सभी को योग करवाया। जनपद के प्रभारी मंत्री व प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन एवं पर्यावरण डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में कोरोना वैक्सीन से देश के लोगों की हिफाजत की।
1: हम आज इस योग दिवस पर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के दीर्घायु की कामना करते हैं। ये योगा को इतना ज्यादा पॉपुलर हिंदुस्तान में करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया को योग का लाभ बताया।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: अभी आप सुन रही थी जिले की हलचल। बदायूं जिले की हलचल।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:25 हुए हैं। आइए सूचना दे दें खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पहली सूचना आई है कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से। खोए हुए व्यक्ति का नाम है रूबी विश्वकर्मा, इनके पति का नाम है झगड़ू विश्वकर्मा। ये निवासिनी हैं बड़ी माता मालवीय गली थाना कोतवाली शहर जनपद मिर्जापुर की। ये पिछले 1 अप्रैल 2026 से लापता हैं। रूबी विश्वकर्मा के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 30 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा गेहुआ है, इकहरा मजबूत जिस्म। ये लापता होने के समय आसमानी रंग का सूट, सलवार, क्रीम कलर का, पैर में सैंडील पहने हुए हैं। रूबी विश्वकर्मा के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से ही प्राप्त एक और सूचना के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है आरुषि पटेल। इनके पिता का नाम है मनोज कुमार सिंह। ये निवासिनी हैं ग्राम कोलना थाना दलहाट जनपद मिर्जापुर की। ये पिछले 25 अक्टूबर 2025 से लापता हैं। आरुषि पटेल के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 17 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। ये लापता होने के समय नीले रंग की जींस, सफ़ेद टॉप, पैर में सैंडल पहने हुए हैं। आरुषि पटेल के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी मिले तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को देने की कृपा करें।

एक और सूचना आई है, ये कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र से है। लापता होने वाले व्यक्ति का नाम है डंगर, इनके पिता का नाम स्वर्गीय शोभनाथ। ये निवासी हैं खुज्जा पोस्ट संडी थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र के। ये पिछले 8 फरवरी 2025 से लापता हैं। डंगर के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 70 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, इकहरा बदन, आँख नाक कान औसत। ये लापता होने के समय सफ़ेद कलर का कुर्ता, पीला दुपट्टा पहने हुए हैं। डंगर के बारे में जानकारी की बातें, इनके बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र को देने की कृपा करें। इसी के साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं अब समाप्त तो हुईं। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह वाराणसी केंद्र है। 9:30 होने वाले हैं। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: हम तो पहली बार यहाँ होटल देखने आए थे।
1: अच्छा,
0: खाना बनाते हैं, कुक तो हम तब भी थे।
1: जी जी,
0: खाना देखा हमने तो इतना बड़ा होटल हमने कभी देखा ही नहीं था। देखा इतना बड़ा होटल भी हो सकता है, चलो इसको अंदर देखा जाए। उस टाइम पे घूमने का देखने का शौक था। स्टेडियम यहाँ पे था, ये छतर मंजिल था, हाई कोर्ट था, ज्यादा कुछ नहीं था। और ये रास्ते पर तो लोग लूट लिया करते थे, ये आलम था। तो हम लोग जब आते थे अमीनाबाद होके आते थे यहाँ स्टेडियम मैच देखने, ये उस टाइम की बात है। तो उस टाइम में हम यहाँ आए, फिर आए यहाँ तो अंदर घुसने के लिए नौकरी करते हैं, चलो देखते हैं, तभी थोड़ी करें भाग जाएंगे। हम तो ये सोच के आए थे, उम्र भी वही थी। यहाँ जब अंदर आए तो यहाँ किचन में ज्वाइन किया हमने, और किचन में जब गए तो यहाँ एक शेफ हुआ करते उस टाइम में, मोहम्मद इम्तियाज कुरैशी।
1: मोहम्मद इम्तियाज कुरैशी,
0: हाँ, वो यहाँ पे इंडियन के मुगलई के इंचार्ज थे।
1: अच्छा।
0: वो एक तो बहुत लंबे चौड़े थे।
1: अच्छा।
0: चेहरा भी ऐसा था, मुझे भी ऐसी थी, तो देख के ही आदमी घबराता था कि अगर आदमी सामने आ जाए तो वैसे ही देख के ही उठ जाए। हाँ, मगर वो थोड़ा सख्त आदमी थे, मगर आदमी अच्छे थे, दिल के अच्छे आदमी थे। टोपी लगाते थे बड़ी सी उस टाइम में।
1: अच्छा।
0: उनका देखा हमने तो, उनके और चेले भाई भतीजे थे दो तीन, वो सब हमारी उम्र के थे, उनके साथ में हम भी लग गए, काम करते रहे। फिर उनका जब हमने वो देखा एक नक्शा जिनका एक रॉब, फिर हमको लगा मुझे भी सेफ ही बनना पड़ेगा, सेफ बनना चाहिए। तब हमारे समझ में आया कि सेफ की इज्जत और वक्त क्या होती है।
1: जी जी।
0: तो फिर उस टाइम से हम नौकरी करते हैं, तो फिर करते रहे, उनके साथ रहे हम करीबन 74, 75, 76, करीब तीन साल के बाद वो तो चले गए। हाँ, उन्होंने नौकरी छोड़ दिया, तो यहाँ चले गए थे आगरा। आगरा में नया होटल खुला मुगल वालों का, वहाँ चले गए।
1: मतलब इसी तरह से आपका जो सेफ बनने का शौक था उन्हीं की वजह से हुआ।
0: और वहाँ दिल्ली जाके देखा हमने उनका, तो उनका और बढ़िया नक्शा हो गया।
1: अच्छा।
0: वहाँ पे तो गेट पे ही शेफ को पूछो तो बस ठीक है जाइए, या वो बुला देंगे। तो वहाँ देखा जब इनका तो और बढ़िया हो गया, फिर वहाँ हमने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद वापस आए, पर हमने वहीं से ये सोच लिया कि हमको भी शेफ बनना है। और तब से हम लगातार कंटिन्यू करते जा रहे हैं। उसके बाद से हमने नए नया ये कैसे होता है सबकी जड़ में जाना शुरू किया। तो ये उनका देखा हुआ तो हमारा था ही, जैसा वो करते थे, जैसे वो चिकन दो तीन टाइप के वो चिकन बनाते थे।
1: जी जी।
0: चिकन मुगलई, चिकन मसाला बनाया करते थे, मटन बनाते दो तीन, मतलब उनकी डिशें अभी भी हम आधी बनाते हैं, आधी तो अभी बची हुई है,
1: अभी बची हुई है,
0: जिनको बीच बीच में लाएंगे।
1: सर, मेरा आपसे सवाल ये है, क्लार्क अवध बिन बतौर शेफ आपकी बुनियादी जिम्मेदारियाँ क्या क्या
0: है? बतौर शेफ जिम्मेदारियाँ तो बहुत होती हैं।
1: जी।
0: जैसे कि एक तो फूड कॉस्ट देखना होता है, दूसरा स्टाफ को देखना होता है,
1: बिल्कुल,
0: तीसरा सफाई देखना होता है, चौथा स्टाफ का ग्रोथ, जैसे दाढ़ी बनी है कि नहीं, कैप लगी है कि नहीं, नाखून उसका कटा हुआ है या नहीं है, जूता पहना है कि चप्पल पहना है, ये भी देखना होता है, सफाई भी देखनी होती है। फिर उसके बाद आता है क्या क्या सामान हमने आज मंगाया है।
1: जी जी।
0: उसमें से क्या आया है।
1: अच्छा।
0: और क्या नहीं आया है। फिर रात में ये करना पड़ता है कि वो कल
1: जी जी।
0: कल हमको क्या क्या चाहिए वो भी देखना होता है।
1: अच्छा, उससे एक दिन पहले ये सब चीजें।
0: हाँ, क्योंकि ये हमारा घर तो है नहीं,
1: बिल्कुल,
0: ये तो कंपनी है। अब कंपनी को आप पहले से रिक्वायरमेंट नहीं देंगे तो लाए कैसे, और हम रिक्वायरमेंट अगर पहले से दें, अब हमको तो मालूम नहीं कि कितना बिक जाएगा, सेल होते होते रात हो जाती है, इसलिए हम रिक्वायरमेंट बनाते हैं रात में 11 बजे के बाद 11:30, 12, 12 बजे बनाते हैं, जब हमारा क्लोजिंग टाइम होता है। सुबह लड़का आएगा वो 9 बजे डाल देगा स्टोर में, स्टोर वाला 10 बजे आएगा, वो 11-12 बजे हमको सामान निकाल देगा।
1: अच्छा।
0: उसके बाद हम ड्यूटी में तब आते हैं 12:30, 12:30, 12 बजे, वो सारा सामान चेक करते हैं, इसमें क्या आया और क्या नहीं आया, जो नहीं आया वो उसको पूछते हैं, वो बताएगा अभी मंगा के देंगे या नहीं है या आने वाला है, फिर वो करते हैं।
1: इस तरह की जिम्मेदारी आप यहाँ निभा रहे हैं।
0: इसलिए यहाँ ये सब कर रहे हैं,
1: ये सब करना पड़ रहा है,
0: कर रहे हैं, और ये सब करना पड़ेगा। अगर आप या कोई भी लड़का जो शेफ बनना चाहता है तो उसको सारी जिम्मेदारियाँ करनी ही पड़ेंगी।
1: जी। इस होटल की कौन सी खास डिश मेहमानों में सबसे ज्यादा मकबूल है?
0: इस होटल की जो हमारा फलकनुमा रेस्टोरेंट है
1: जी जी।
0: इसका तो जो खास है उसमें एक गोश्त फलकनुमा है जो बहुत फेमस है,
1: गोश्त फलकनुमा।
0: हाँ, और एक पनीर हजरत महल है, और एक सब्ज गलावट, ये सर्च गलावट वेजिटेरियन है। तो ये वैसे तो यहाँ का सारा ही कुछ फेमस है, रेस्टोरेंट ही फेमस है, लेकिन ये चीजें आदमी आंख बंद करके ऑर्डर देता है, गोश्त फ्राई ना ले आओ, या हजरत महल पनीर, या फिर अगर हमको किसी को खिलाना होता है साहब वेज में हमको क्या खिलाना, कोई कबाब चाहिए तो उसको खिलाते हैं सब्ज गलावट। ये सब तो यहाँ की मशहूर डिश है, और बनाने को तो बहुत चीजें बनाते हैं।
1: एक बेहतरीन खाना तैयार करने के लिए किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए?
0: सबसे बेहतरीन खाना बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा उस की जड़ में।
1: बिल्कुल,
0: जैसे खाना बनाते हैं आपको उसमें जिंजर गार्लिक डालनी है तो हाथ साफ सुथरी है जैसा देखा जाता है।
1: बिल्कुल,
0: लोग क्या करते हैं

0: हाँ साफ नहीं है,
1: काट देते हैं,
0: काट देते हैं। या प्याज छीला और ठीक से छीला नहीं, उसमें काली लगी होती कई जगह, वो साफ नहीं हुआ, तो वो फिर खाना में आगे से सही नहीं होगा। कुछ ना कुछ कमी है, अगर आपने छोड़ दी तो वो कमी आगे जाके दिक्कत पैदा करेगी। तो वो आप वहाँ से शुरू करें, पहले अपने आप को, आपके कपड़े साफ हों, आपके हाथ साफ हों, आपके नाखून कटे हुए हों, उसके बाद आप जो काम करें वो साफ सुथरा हो। आप गोभी काट रहे हैं या जो भी काट रहे हैं या जो भी बना रहे हैं वो पहले धुला हुआ हो। ऐसा नहीं कि भिंडी जैसे ही बाजार से आई आपने काटा शुरू कर दिया, उसको काटते हैं पहले, उसको धोते हैं, फिर उसका पानी सुखाते हैं, उसके बाद में साफ सुथरा के, अगर आप साफ से काम करेंगे तो आपका काम भी आगे से अच्छा ही होगा और साफ सुथरा होगा। तो शुरू तो वहाँ से करते हैं।
1: खाने की तैयारी में मैयार और सफाई को यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम जरूरी है?
0: जैसे कि हम कोई ग्रेवी बनाते हैं, ग्रेवी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ग्रेवी नहीं है तो कुछ आइटम तो बन जाएंगे पर ज्यादा नहीं बन सकते।
1: अच्छा,
0: तो ग्रेवियां बनाते हैं हम तीन चार किस्म की। एक रेड ग्रेवी बनाते हैं, एक व्हाइट ग्रेवी बनाते हैं, और एक ब्राउन ग्रेवी बनाते हैं।
1: जी।
0: वैसे चार होती हैं। एक पालक ग्रेवी बनाते हैं, पर पालक की कम बिकता है, कुछ आइटम है उसके जो चार, इसलिए वो उसे बनाते हैं। और ये सब तीन ग्रेवियों के आइटम ज्यादा होते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे हजरत महल भी इसी ग्रेवी में है, लाल रेड ग्रेवी में, बटर चिकन भी इसमें ही है, चिकन टिक्का भी इसमें ही है, ऐसे कई चीजें हैं। तो तीन ग्रेवी हम पहले से रेडी करते हैं।
1: अच्छा।
0: अब इनको रेडी करने के लिए आपको जिंजर गार्लिक चाहिए, तो जिंजर गार्लिक को साफ सुथरा करना पड़ेगा, महीन काटिए, फिर उसको बढ़िया धोइए, धोने में छिलके बिलके निकालिए, छिलके निकालने के बाद फिर उसको पेस्ट बनाइए, पेस्ट बना के अलग रखते हैं, काजू का भिगा के बढ़िया से धो के फिर उसका पेस्ट बना के अलग रखते हैं। टमाटर पूरी टीन में आती है, उसको लेके हम काट के डब्बे से बाहर निकाल के बॉल में करके फिर उसको रेडी करके पहले से रखते हैं। तेल हमारे पास है कि नहीं, वो भी कौन सा है, साफ सुथरा है कि नहीं, वो रखते हैं। फिर जिस बर्तन में बनाना है फिर उस बर्तन को साफ सुथरा रखते हैं। ये सब तो हो गई तैयारी, बनानी तो हम इसके बाद शुरू करते हैं।
1: तैयारी पहले करते हैं,
0: हाँ,
1: फिर बनाने की,
0: फिर शुरू करते हैं,
1: बनाना शुरू करते हैं।
0: क्योंकि उस टाइम में हमने तेल डाल दिया, अब प्याज ढूंढ रहे हैं, प्याज लाए तो जल गई, या जब तक है या कुछ और लाए जल गई, इसलिए हमने वो पहले से पूरा रेडी कर लेते हैं ताकि हमको बीच में रुकना नहीं पड़े। जैसे यहाँ की दाल, दाल पलकनुमा, वो भी काफी मशहूर है, फेमस है। और ये दाल भी हमने इम्तियाज कुरैशी से ही सीखी है। अभी भी रेस्टोरेंट में दिल्ली में दाल बुखारा के नाम से बहुत फेमस है।
1: दाल बुखारा के नाम से
0: दाल के वहाँ पे फेमस है। वो तो बेचारे अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बुखारा रेस्टोरेंट उन्होंने ही शुरू किया है।
1: अच्छा अच्छा।
0: ये दाल भी हमने उन्हें सीखी।
1: आजकल लोगों के खाने के जौक में क्या तब्दीली आई?
0: आजकल के लोग बहुत चेंज हो गए
1: जी।
0: क्योंकि जैसे भी अभी हमारे वहाँ लोग आते हैं खाना खाने, तो उनके जो कई बार ऐसा भी होता है, जो उनके माँ बाप होते हैं वो तो हमारे वहाँ खाना खाते हैं, अब उनके बच्चे आते हैं, उनको चाहिए पिज्ज़ा, किसी को चाहिए पिज्ज़ा, किसी को चाहिए मोमो। तो उसके लिए एक नया रेस्टोरेंट हमने खोला हुआ है यहाँ पे। तो हमने देखा कई बार उनके माँ बाप यहाँ बैठे हैं, उनसे बात की, कितने लोग हैं आप लोग? बोला हम लोग आठ लोग, तो आठ हैं पर चार लोग नीचे बैठे हैं। नीचे क्यों बैठे हैं? लोग वो सब बच्चे हैं, उनको किसी को पिज्जा चाहिए, किसी को मोमो चाहिए, किसी को डोसा चाहिए, तो वो सब नीचे ले आते हैं।
1: अच्छा।
0: तो आजकल के लोगों में और पहले के लोगों में यही डिफरेंस है। आज लोगों को चिकन मुगलई वो नहीं खाएंगे, बिरयानी तो खाएंगे शौक से, लेकिन उनको पिज्जा भी चाहिए, उनको मोमो भी चाहिए, किसी को डोसा चाहिए, सर्व करते हैं। अगर आपको विशेष रिक्वायरमेंट है, अगर आपके मान लीजिए एक बच्चा है, अब उसको एक डोसा चाहिए या फिर एक बर्गर चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, तो ऑर्डर लेके हम नीचे से मंगा देते हैं।
1: अच्छा, नीचे से मंगा देते हैं।
0: मंगा देते हैं, वो सर्व कर देते हैं यहाँ पे। अगर आपको बहुत से लोग आते हैं, उनको पिज्जा चाहिए
1: जी,
0: तो हम जो लोग क्रस में ऑर्डर करके वहाँ मंगा देते हैं।
1: अच्छा।
0: लेकिन इस पर बनेगा वो जो लोग क्रस में ही, जो जहाँ बनता है वही बनेगा।
1: अवध की रवायती खानों की क्या खसूसियात है?
0: देखिए, अवध की खसूसियत क्या है, अवध तो एक क्षेत्र है जो पहले भी था,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और बाद में आए मुगल
1: जी,
0: तो उन लोगों ने अपने हिसाब से इसको सेट कर दिया,
1: बिल्कुल।
0: अब ये अवधी और मुगलई हो गया।
1: अच्छा।
0: तो अवधी खाने तो पहले ही बढ़िया थे, लेकिन नॉन वेज कम था। ये जो मुगलई खाना है उसमें खास बात उसकी ये है, बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग पुराने लोग करते हैं, नए लोग तो नहीं। पुराने लोग क्या करते हैं, ये भी हमने बहुत पुराने के लोगों से ही सीखा है। मुगलों का खाना जो बनाते थे या जो उस टाइम के कारीगर थे
1: जी जी,
0: वो डालते सब कुछ से, जैसे बड़ी इलायची हुआ, तेज पत्ता हुआ, दालचीनी हुआ, केसर हुआ, हम भी वो सब डालते हैं
1: जी।
0: खास बात उनमें जो थी हम भी वही करते हैं, ये सब दिखना नहीं चाहिए।
1: अच्छा।
0: अब लोग क्या करते हैं, कहीं आप जाइए वो तेज पत्ता भी डाल देंगे, दालचीनी भी डाल देंगे, मगर वो आपको जब सर्व करेंगे
1: तो
0: दिखता है। मुगलई खाने का ये खासियत नहीं है।
1: अच्छा।
0: आप सब डालिए, लेकिन खाने वाले को ये पता लगे कि टेस्ट बढ़िया है, क्या क्या पड़ा है, ये सिर्फ बनाने वाले को पता होना चाहिए। तो बहुत ही फाइन खाना चाहिए, बहुत फाइन, बहुत साफ सुथरा, ये नहीं कि आपने उसमें तमाम लकड़ी पकड़ी डाल दी और वैसे ही सर पर दिया, ये उसी

0: खास बात है।
1: एक शेफ को किन सलाहियतों और खूबियों का हामिल होना चाहिए?
0: आजकल तो बहुत ज्यादा लोग एक्सपेक्ट करते हैं
1: जी।
0: कोई भी कंपनी आजकल का शेफ को चाहती है कि ये शेफ सब कुछ देखे
1: जी जी।
0: मतलब खाना भी बनाना आना चाहिए, इंग्लिश बोलनी भी आनी चाहिए, गेस्टों से बात भी कर ले और यहाँ स्टाफ को डील भी कर ले
1: जी जी।
0: जो हमारा स्टाफ नहीं बनाता वो बना के भी दिखा दे और वो किसी किचन को किसी नए रास्ते पे ले जाए, नई नई चीजों का इंट्रोडक्शन करे, कोई नया नई चीज लाता रहे
1: जी।
0: ये भी चाहते हैं। तो आजकल के शेफ को तो ये सब आने चाहिए आजकल के शेफ से, क्योंकि क्या होता है वहाँ जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ गए होंगे इंस्टीट्यूट में अब
1: जी,
0: तो वहाँ पे लोग बता देते हैं साहब आपको तो ये बना देंगे, आपको ये बना देंगे। हकीकत तो ये है वो बनाएंगे और बनेंगे आप, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप बहुत मेहनत कर सकते हैं
1: तब आइए।
0: सबसे पहला ज्यादा करना पड़ता है जो रियल में आपको पहले ड्यूटी ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे आए और फिर आप टाइम देख रहे हैं कि साहब 5 बज गया, 6 बज गया या 8 बज गया।
1: इसमें टाइमिंग की कोई लिमिट
0: नहीं है। अगर आपको छुट्टी भी 10 बजे होनी है या 10 बजे आपने सोचा या किसी से कोई इंतजार कर रहा है और 10 बजे कोई गेस्ट आ गया तो आप छोड़ के नहीं जा सकते।
1: बिल्कुल
0: 12 भी बज जाएगा, कभी आपको थोड़ा पहले भी टाइम मिल जाएगा। तो इसमें आपको मेहनत ज्यादा चाहिए। दूसरा, आदमी को थोड़ी परवाह भी होनी चाहिए। अगर एक दिन गया एक दिन नहीं गया, सरकारी नौकरी नहीं है, और अगर सरकारी नौकरी भी होती है होटल में तो ये सारी जिम्मेदारियां उसकी हैं, वो बाहर की तरह नहीं कर सकता। होटल में अगर करना है तो आपको सब कुछ मिलेगा पर आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। जैसे आपको कंपनी जूते भी देती है, यूनिफॉर्म भी देती है और सुविधा खाने पीने की भी देती है, चाय पानी की भी देती है, तो आपसे उतनी उम्मीद भी रखती है कि आप ये करेंगे आप वो करेंगे। तो ये सभी करना पड़ता है और करना चाहिए भी। तो हम नए लोगों से यही कहना चाहेंगे जिनको भी,
1: नौजवानों को आप यही मशवरा देना चाहेंगे?
0: हाँ, ये मशवरा देना चाहेंगे कि अगर जो उनको किचन में आने का शौक है, क्योंकि होटल में तो कई डिपार्टमेंट हैं,
1: बहुत डिपार्टमेंट
0: यहाँ मेंटेनेंस भी है और यहाँ पे एफ एंड बी सर्विस भी है, प्रोडक्शन है किचन में भी है, तो किचन को प्रोडक्शन कहते हैं
1: जी।
0: जो आदमी किचन में आना चाहता है मतलब प्रोडक्शन में करना चाहता है, ज्यादा नॉलेज हम तो उसी के रखते हैं
1: जी।
0: और हम उसके लिए एडवाइस बता कर सकते हैं, क्योंकि हमको सबसे अच्छा किचन ही लगता है। हाँ, किचन में ही लगता है और एक तरीके से कहा जाए तो किचन को होटल का बैकबोन भी मानते हैं।
1: सही बात,
0: क्योंकि किसी भी होटल में जाएं आप तो सोचेंगे इसका खाना कैसा है, चलो खाना खा के देखते हैं, या अगर आपको खाना उसका पता है कि अच्छा है तभी आप जाएंगे, और आपको पता है कि बेकार है
1: तो क्यों जाएंगे।
0: तो इसलिए आप खाना खाएं ना खाएं वो अलग बात है, लेकिन अब नाम तो खाने के सुन के जाते हैं।
1: बिल्कुल, खाने के
0: नाम सुन के जाते हैं।
1: जगह उस होटल में जाओ यार ये चीज़ दाल
0: बढ़िया मिलेगी। यही वजह है कि जो हमारे वहाँ पलक नुमा में
1: जी
0: आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। अगर आप कहें साहब हमको 10 लोगों को आना है तो हमारे पास टेबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले बुक हो जाती है 5-7 बजे से पहले।
1: अच्छा,
0: 7 बजे पहले बुक करना,
1: फोन कॉल पे बुक होता है।
0: बुक का कोई पैसा लगता नहीं है।
1: अच्छा,
0: बस आपको पहले से बुक कराना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेबल खाली मिलती है।
1: अच्छा,
0: और नहीं तो फिर
1: हम डायरेक्ट आए तो मुश्किल हो गया। अगर
0: हाँ, मुश्किल हो जाएगा, कभी कभी तो मिल जाएगी
1: जी जी।
0: पर कभी कभी ऐसा भी होगा अब वेट करना पड़ेगा, अक्सर ही ऐसा हो जाता है, वेट करना पड़ता है एक मंगल को छोड़ के, क्योंकि मंगल को लोग एक गजल भी नहीं होती, तो मंगल को कम लोग भी आते हैं जिनको ज्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए
1: जी जी।
0: ऐसे लोग आते हैं, तो हम लोगों का काम तो हो ही जाता है, ऐसे लोग बहुत हैं जिनको शोर शराबा नहीं चाहिए, बाकी सब दिन होता है। हम उन लोगों को ये कहना चाहेंगे कि जिन लोगों को किचन में आना है वो लोग घर से ये तैयार होके आए, ये हमको ज्यादा मेहनत करनी है और शेफ बनना है। तो ऐसा नहीं है कि वो शेफ बनना कोई बहुत कठिन बात नहीं है, बन जाएंगे, पर ये कड़ी मेहनत चाहिए। ड्यूटी का कोई टाइम ही नहीं, ये सोच के आए कि हम 10 घंटे भी कर लेंगे और 12 घंटे भी कर लेंगे, तो 10 घंटे 12 घंटे भी करें,
1: टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है ये कह सकते हैं।
0: क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देंगे तो अपना पूरा काम
1: कर ही नहीं पाएंगे।
0: होटल क्या होता है, सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है,
1: बिल्कुल सही बात,
0: और रात को 12 बजे तक चलता है। ये तो नॉर्मल है, वैसे तो 24 घंटे चलता है। हमारा रेस्टोरेंट भी यहाँ पे है जो जोलो क्रस, 24 घंटे चलता है,
1: लोग रहते भी हैं
0: 24 घंटे चलता रहते भी हैं,
1: बिल्कुल सही
0: बात। जनरली वैसे ब्रेकफास्ट चलता ही है,
1: बिल्कुल,
0: तो ड्यूटी ज्यादा करनी पड़ती है, ड्यूटी ज्यादा करिए
1: जी। आपके कैरियर का कोई ऐसा यादगार तजुर्बा जो हमारे सामने को आप शेयर करना चाहेंगे?
0: हाँ, तजुर्बा हमने कई लोगों से, यहाँ हम रेस्टोरेंट मिल चुके हैं कई सेलिब्रिटी।
1: अच्छा,
0: जिसमें से हमको एक खास लगता है, एक मैडम आई क्या है अभी, वो शिल्पा सेठी।
1: अच्छा,
0: नाम सुना होगा आपने।
1: जी जी,
0: तो वो उनको खाना खिलाने के लिए बैठाया हमने, उन्होंने बोला आपका हमको गोश्त फलन हुआ पसंद है।
1: अच्छा,
0: और बहुत पहले आए थे यहाँ और आज वही खाना है उनको।
1: अच्छा
0: ठीक, खिलाया उनको गोश्त फलाना खाने के बाद। ये तो बहुत लोगों के साथ में हुआ है, कई लोगों को हम खिला चुके, पर उनके साथ याद

0: इसलिए
1: क्योंकि उसके बाद जब हम उनसे मिलने गए कहने लगे हम तो इंतजार ही करते, उनका एक बेटा है वो भी साथ में था,
2: अच्छा
1: हस्बैंड भी थे, तीन लोग थे, हम तो इंतजार ही कर रहे थे कि आप आए।
2: अच्छा
1: हाँ, गोश्त फलकनुमा हमको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने खुद हमको बोला कि आपके साथ हमको एक फोटो खींचनी।
2: अच्छा अच्छा,
1: फोटो है हमारे पास अभी भी कहीं, तो ये यादगार है। और एक वो आती है मालिनी अवस्थी,
2: अच्छा
1: वो भी जब आती है
2: तो
1: अभी भी
2: यही आती है फलनुमा,
1: तो फलनुमा ही आती है।
2: अच्छा
1: अच्छा, बहुत से गेस्ट हैं जो फलनुमा में ही आते हैं।
2: जी जी,
1: लेकिन वो लोग आएंगे यहीं,
2: आएंगे
1: यहाँ फलनुमा ही आएंगे,
2: फलनुमा ही आएंगे,
1: उनको आप रास्ते में रोक नहीं सकते।
2: आखिर में हमारे सामाइन के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
1: आजकल के खाने देखिए, खाने सब अच्छे हैं
2: जी,
1: लेकिन आजकल के जनरेशन को तो खाने वही पसंद आते हैं। हम अपने घर में भी देखते हैं
2: जी,
1: छोटे बच्चों को मैगी चाहिए, मगर हमारे ख्याल से तो वो खाने खाने चाहिए जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हो। मैगी ठीक है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि सेहत के लिए बहुत बढ़िया होगी,
2: बहुत बढ़िया बिल्कुल,
1: क्योंकि उसमें क्या क्या पड़ा है ये हमको खुद नहीं मालूम। हम जो खाना बनाते हैं उसमें क्या क्या पड़ा है ये हमको मालूम, घर में आपकी मदर खाना बनाती है उसमें क्या क्या पड़ा है उनको मालूम है
2: बिल्कुल,
1: और वो क्या क्या अपने बच्चे को खिला रही है ये उनको मालूम
2: है,
1: तो उसमें ऐसी कोई चीज नहीं डालेंगी जिससे वो नुकसान करे। खाना तो घर का ही अच्छा होता है। आजकल के लोगों को हम तो वही बताएंगे, खाना वो खाएं जो उनको खुद मालूम हो इसमें क्या क्या होता है,
2: क्या होता है बिल्कुल।
1: अब इसमें पता ही नहीं क्या क्या होता है, जैसे बाजार में तमाम सॉस आते हैं, उन्होंने बोतल उठाई और डाल दिया
2: बिल्कुल,
1: उस बोतल में क्या है बनाने वाले को भी नहीं मालूम, क्योंकि उसको मालूम है व्हाइट सॉस है डाल दिया, ये रेड सॉस है डाल दिया। रेड सॉस में टमाटर कितना है और कद्दू कितना है कि नहीं है ये भी पता नहीं। तो फिर आपको वही खाना चाहिए जो आपको मालूम है, खाना आप कुछ भी खाएं सब अच्छा है। और जो पुराने खाने हैं जैसे कि हम लोग जो मुगलाई खाना है आपको, तो आप गोश्त फलनुमा खाइए, हांडी चिकन खाइए, पराठा खाइए, सीरमाल खाइए, बिरयानी खाइए, बहुत कुछ खाने के लिए है। वेजिटेरियन खाना है तो आप सब गिलावट खाइए, पनीर अफगानी खाइए, आलू खाइए, तंदूरी आलू खाइए, तंदूरी पराठा खाइए, आलू पराठा खाइए, पराठा दही खाइए, खाने लिए भी बहुत कुछ है। पर मेन कहने का मतलब हमारा यही है कि आपको वो सब खाने चाहिए जिसमें आपको पता है कि इसमें क्या है,
2: क्या है।
1: अब आपको पता ही नहीं है क्या है,
2: खाते
1: चले गए फिर आप कहेंगे हमारी गैस बन रही है या हमारा पेट दर्द हो रहा है, वो होने के पूरे चांस रहते हैं।
2: बहुत शुक्रिया। ये थे भीकम प्रसाद शेफ साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और खानों की दुनिया से मुतालिक दिलचस्प मालूमात हमारे सामाइन तक पहुंचाई। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामाइन उम्मीद है आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है, फिर मिलेंगे किसी और दिन, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद सईद अख्तर को दीजिए इजाज़त। आदाब।
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से उर्दू प्रोग्राम, आज की पेशकश थी जायका।
4: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 9:50 हुए हैं। कार्यक्रम लोक संगीत हम लेकर आएंगे इस संदेश के पार।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
2: 0542227658।
0: संदेश हुआ पूरा लोक संगीत में आपका स्वागत। आज की कलाकार हैं रूबी।

0: इसी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आज की कलाकार थीं रूबी देवी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 10 बजे हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार हम सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के पार।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: पहला गाना रावड़ी राठौड़ फिल्म का मिका सिंह और वाजिद अली की आवाज़ में।

अब ये सुनते हैं दीवाना फिल्म का गाना, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के बोल है, नदीम श्रवण का संगीत।

दिल तो पागल है, आइए सुने इस फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। रचना आनंद बख्शी की है, संगीत उत्तम सिंह का।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ों में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना। आनंद बख्शी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था। अब आइए सुनते हैं अनोखी अदा फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अब आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में राजा फिल्म का गाना। रचना समीर की है, नदीम श्रवण का संगीत।

मेरे जीवन साथी, आइए सुने इस फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़ में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये रात फिर ना आएगी। आइए सुने इस फिल्म का गाना आशा भोसले और मिन्नू की आवाज़ों में। गीत रचना कश्मीरी की है, संगीत है ओपी नैयर का।

आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में कटी पतंग फिल्म का गाना। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत। अब आइए सुनते हैं मजबूर फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत रचना आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और यही है कार्यक्रम झनकार की आखिरी पेशकश।

0: अभी आप सुन रहे थे झनकार। मीडी वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। दिन के 11 बज रहे हैं, सुनेंगे ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस इस संदेश के बाद।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस AIRVNS@gmail.com। जी हाँ श्रोताओं, अब आप मेल के जरिए भी अपनी फरमाइश के फिल्मी गाने सुन सकते हैं। प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में आकाशवाणी वाराणसी से हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, यानी इस मेल पर आपको अपनी फरमाइशें हम तक पहुँचानी है। AIRVNS@gmail.com। तो अब खतों, फोन इन, व्हाट्सएप और SMS के बाद अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाइए मेल के जरिए भी, और सुनिए फरमाइशी गीत एक्सप्रेस प्रोग्राम। तो अब हम हैं आपके साथ हर घड़ी, हर पल और हर प्लेटफॉर्म पर। आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।
4: Who's gonna have fun? Are you ready?
0: फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज का ये सफर आप तय कर रहे हैं आपकी रेडियो हम सफर चित्रा के साथ। श्रोताओं, आज है गुरुवार और आज के दिन हम आपको

सुनवाते हैं ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी की एक्सप्रेस, जो कि आपने पहले से ईमेल्स भेजे होते हैं उस पर। आपको बता दें हमारा ईमेल आईडी airvnsfgex@gmail.com। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म कालीचरण से। लता मंगेशकर की आवाज है, इंद्रजीत सिंह के बोल है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। और इस गीत को सुनने वाले श्रोता हैं हमारे गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल बबूरी बाजार चंदौली से, विजय जायसवाल सरोज जायसवाल रामनगर कदमा जमशेदपुर से, मराहू जायसवाल देवंती जायसवाल चकिया बाजार चंदौली से, सुंदर जायसवाल अलावा इसके संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल साहनी पिंगावाला चौक गोरैया जलंधर से, दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कृणाल मेहरा जी ने ये ईमेल भेजा है, चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियांक शर्मा, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना, डॉक्टर अदीबा, अहमदनगर पजडीहा से बदरुद्दीन अंसारी, मुस्ताक सुलेमानी, सलीम आजाद, मल्लू अंसारी, पटिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, ग्राम लसुड़िया तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ एमपी से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोयल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, बड़ीगेवी चौराहा वाराणसी से त्रिभुवननाथ मालवीय, अनमोल मालवीय और मालवीय परिवार, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम, नीलिमा अजीम, शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, साथ ही रोशनी मनवर और बेबी श्रेयांशी, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, विजय, विजयंत कुमार जायसवाल, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरमीत, राहुल और गुरुशब्द राहुल। अलावा इसके टोरोवाल जिला नवान शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, दिव्या कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रकाश थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वानिका और वाणी थांदी, उमरी थांदेड़ महाराष्ट्र से बलुअप्पा खटबले, ज्योति खटबले, शिव सुंदर खटबले और आराध्या खटबले, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। तो इनकी पसंद पर आई हम आपको सुनवाते हैं कालीचरण फिल्म से ये गीत।

अभी आपने सुना कालीचरण फिल्म से ये गीत। कार्यक्रम में अगला गाना हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सौदागर से। आवाज है लता मंगेशकर की, गीत संगीत रविंद्र जैन का। और इस गीत के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। इसके अलावा सहारनपुर गांव कुम्हारहेड़ा से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन, पांडुरंग कुमार, कुम्हार गली कोलगांव से हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, समीरा बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान, पेहरा बाजार झुमरी तलैया गिरडीह से शिवानी कुमारी सिन्हा, प्रियंका कुमारी सिन्हा, अजय कुमार सनातनी, सादुल नगर राजस्थान से राम कुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़, ग्राम बोईनापार लाटा बोड़ा जिला बालोद छत्तीसगढ़ से देवनारायण साहू, योगिता गीतिका, चंदन रानी साहू, उमाबाई गंगा राय साहू, दिल्ली नांगलोई से राजेंद्र जटोलिया, उषा जटोलिया, कृष्णा पूजा कोमल और आरव जटोलिया। दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, रचिता बिटिया, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधाना खुराना। वृंदावन कॉलोनी माहेश्वर से दीपक गुप्ता, सुनीता, विवेक, निशी, आशुतोष, पलेरा टीकमगढ़ एमपी से तारा वर्मा विश्वकर्मा, राजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनन विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा, चांदनी चौक गड़ई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र और रौनक सेन, कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, साई गायकवाड़, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत, यश भगत, ग्राम कुंडवाल कुंडावाल तारा पोस्ट लार रोड स्टेशन देवरिया से रतिना त्रिपाठी, राखी आर्या, इंद्री, ओम प्रकाश नारंग, शिवांग रोली, अदिति और माताजी निर्मला त्रिपाठी, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब, यवतमाल पंजाब से राम टेके यशोधरा, राम टेके और शव्या टेके, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जसवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप

कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, रजईपुर पोस्ट, उगापुर भदोही से पप्पी यादव, ललित चंद्र यादव, बबलू यादव, सुनीता यादव और लवकुश यादव, पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मरोत्रा और भूषण शर्मा। आइए सुनवाते हैं इन सबकी पसंद पे सौदागर फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत।

सौदागर फिल्म के इस गीत के बाद आइए हम आपको सुनवाते हैं अपनापन फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज, साथ में है मोहम्मद रफी, आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने जमनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, जमनिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल, मुकाम पोस्ट फूल चिंचोली से तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलाड़ी, सुमैया मुलाड़ी, सुवान मुलाड़ी, समीर मुलाड़ी, सलमा मुलाड़ी, मुमताज़ मुलाड़ी, दिलशाद मुलाड़ी, नासिर मुलाड़ी, बानू बी मुलाड़ी, बादशाह मुलाड़ी और पूरा मुलाड़ी परिवार ने इस गीत को सुनना चाहा है। जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी ने इसी गीत को सुनना चाहा है। पुटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, साहू सीमा साहू ने हमें ईमेल भेजा है इसी गीत के लिए। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोध का ये ईमेल है। फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकलम, नफीसा प्रवीण ने हमें ये संदेश भेजा है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल ने ये ईमेल भेजा है इसी गीत के लिए। जिला खरगोन सेनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदन, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगपाल का ये ईमेल आया है। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बॉय हिमांश ने हमें ये ईमेल भेजा है। शिवाजी नगर वडाली देशमुख महाराष्ट्र से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंदिरा ताई, सुनैना, दीपाली स्वराज और तनुज का ये ईमेल मिला। पलारी रोहासी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू, नंदिनी साहू, मनीष साहू, मयंक जानकी साहू, रवि रेजिडेंसी राजकोट से हेमा जाटव, सुधा कुमारी, संध्या कुमारी, बिहारी पुरम, वीरग्राम से जयशंकर तामुरिया, अजिता प्रेम तामुरिया, दिलशाद नगर गांव पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, लक्ष्मीकांत पांडे, बबलू तिवारी और रामनिवास सिंह कुशवाहा का ये ईमेल है। रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मुअज्जम शेख, पलक नाज, बेबी अली शेख का ये ईमेल है। इंदिरा बिहारी दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा डब्लू अंसारी, जूही परी अंसारी, इन सबकी पसंद पर आइए हम आपको सुनवाते हैं अपना फिल्म अपनापन फिल्म से ये गीत।

अभी आपने सुना अपनापन फिल्म से गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पारसमणि से। आवाज है मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की, बोल हैं असद भोपाली के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनने वाले हमारे श्रोता हैं सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अवंतिका येले। इन्होंने धन्यवाद लिखा है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जावेद अख्तर जी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशूल कुमार राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तुबा आफरीन और शमीम अख्तर का ये ईमेल मिला है। जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी का ईमेल मिला हमें। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हीरा मन शेरडे जी, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडा ने का ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी ने ये ईमेल भेजा है। ये संदेश है दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, राधा पांडे, वैभव पांडे और गीता पांडे का। अलावा इसके हमारे और भी श्रोता हैं जिन्होंने हमें ईमेल भेजा है। ग्राम पंजिनिया जिला जालौन से संतेंद्र कुमार चन्नौसिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया का। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, जिला खरगोन। सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाई जान और राजकुमार। बुढ़ाना आदलपुर गुंगवा से संजय बमनिया, माया, कान्हा और कृष्णा। हलौत बाजार लाहौत से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी। भोपालगढ़ राजस्थान से धीरेन्द्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वडलकर, शुभम वडलकर, पुन्नू वडलकर। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना गोंडा ने, प्रणय प्रसिद्धि, महेश राम और प्रतिभा गोंडा ने का हमें ये ईमेल मिला है। गांव डागर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमलजीत कौर ने हमें ईमेल भेजा है। गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, उज्जवल दास मानिकपुरी ये हमें ईमेल भेजे हैं लेवाई छत्तीसगढ़ से। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, कैथल डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, इन सबकी पसंद पर आइए हम आपको सुनवाते हैं पारसमणि फिल्म से ये गीत।

पारस मणि फिल्म से अभी आपने सुना इस गीत को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म होली आई रे से। आवाज है मुकेश की और इस गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। और इस गीत को सुनने वाले श्रोता है ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अलावा इसके रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा हमें ये संदेश भेज रहे हैं। नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर, ग्राम चरौदा बार नावपारा, जिला बलौद बाजार छत्तीसगढ़ से इसी गीत के लिए हमें इन्होंने संदेश भेजा है। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी ने ईमेल भेजा है इसी गीत के लिए। सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से आपका नाम हम शामिल कर चुके हैं, आपने कई बार ईमेल भेज दिया है। लोरमी चंचेड़ी

छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी ने लिखा, इन्होंने धन्यवाद लिखा है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पटियाली रोड गंज डुडवा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरीबा और हबीबा का ये ईमेल आया है। गांव और डाकर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवलीत कौर, करमजीत कौर ने ईमेल हमें भेजा है। मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जिव्यम जैन ने हमें ईमेल भेजा है। अलावा इसके पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउद्दीन हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे का ये ईमेल आया है। पिपरिया जिला कबीरधाम से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता, अराड़ नाथ घाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा का ये ईमेल मिला है। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान, पानी टंकी परेवा जौनपुर से रॉकी, बम बम माना और रिंकू का ये ईमेल आया है। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश सेन का ये मैसेज है। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, अभी आपका हम संदेश ईमेल शामिल कर चुके हैं। ग्राम व पोस्ट बिरवेरा जिला हमीरपुर से मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल, ग्राम बहुआरा पोस्ट दिलदार नगर जिला गाजीपुर से अखलू राम और केदार राम का, उच्च भट्टी विलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, सिवन्या गोस्वामी, अन्नू गोस्वामी और आशा गोस्वामी का ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है। मदरसा गेट मणियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, ग्राम घूरो पोस्ट नियमताबाद से वंश नारायण प्रजापति, सितारा देवी प्रजापति, रिया कुमारी प्रजापति, अनुराग कुमार प्रजापति, किशन कुमार प्रजापति और उनके माता पिता ने हमें ये ईमेल भेजा है। कुटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और हैप्पी राय का ये हमें ईमेल प्राप्त हुआ है। तो आपकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म होली आई रे से ये गीत। आवाज़ है मुकेश की, बोल है इंदिवर के और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

अभी आपने सुना होली आई रे फिल्म से ये गीत। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हीरा पन्ना से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत है आरडी बर्मन का। और सुनने वाले हमारे श्रोता हैं इस गीत को, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। अलावा इसके बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश शाहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, डॉक्टर दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, सरीमपुर बक्सर से एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी का ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ इस गीत के लिए। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई और राजकुमार का ये ईमेल हमें मिला है। फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकलम, नफीसा, प्रवीण का ये ईमेल है हयात कॉलोनी अरैया बिहार से। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़ का ये मेल मिला है। अलावा इसके ये शिवाजी चौक

नी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजक रजक लालू, सोना, मोना, हनी, यश और उनके मम्मी पापा। कराए कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरिश खत्री, नूर मीना, इरबान और मीना और कासिम मीना का ये ईमेल है। वार्ड नंबर 1 से जयराम सिंगरकर, दिशांत कुमार सिंगरकर और अर्पिता जी का ये ईमेल हमें मिला है। वार्ड नंबर 1 भोपाली से भानवेड़ा मुरवाल से हेमंत पटौदी, उमंग पटौदी, मोक्ष पटौदी, भरतराम पटौदी, जयंती पटौदी, कालनौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नयन ढींगिया, बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा, मजनू का टीला से कमल बालूचा, मधु बालूचा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का ये ईमेल प्राप्त हुआ है। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, निखिल कांगड़ा, बबीता बोत और तन्वी बोत, पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री और धनश्री बुरांडे का ये हमें ईमेल प्राप्त हुआ। तो आइए सुनवाते हैं इन सबकी पसंद पर हीरा पन्ना फिल्म से ये गीत। आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

अभी आपने सुना हीरा पिन्ना पन्ना फिल्म से गीत। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाते हैं प्रेम पर्वत फिल्म से ये गीत। आवाज है लता मंगेशकर की, बोल हैं जानिसार अख्तर की और संगीत है जयदेव का। और इस गीत को सुनना चाहा है गढ़नोखा लालगंज रोहतास से राजकिशोर सिंह, बड़क सिंह और आर के सिंह। अलावा इसके बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शप्सिता पलक, लुबना और यश मंसूरी का ये ईमेल आया है।

पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा का ये ईमेल आया है। और बलहार शाह से सूरज लोढ़े, प्राची लोढ़े, एकलव लोढ़े, बाजार रोड से अभी आपने हम इस गीत को आपके नाम को हमने शामिल कर लिया है। बिलासपुरी छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल।

कुमार सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, बड़ी बहू रिम्पी और तनुश्री गुप्ता। बोरपारा चौक बस बेरिया, वेस्ट बंगाल से मुन्नी देवी शॉ, जयप्रकाश शॉ, बसंत लाव शाओ का है। नगर पंचायत गंगापुर वार्ड जवाहर नगर से आपका हम ईमेल शामिल कर चुके हैं, तो आइए आपकी पसंद पे ये सुनवाते हैं इस आखिरी गीत को।

कुमार सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, बड़ी बहू रिम्पी और तनुश्री गुप्ता। बोरपारा चौक बस बेरिया, वेस्ट बंगाल से मुन्नी देवी शॉ, जयप्रकाश शॉ, बसंत लाव शाओ का है। नगर पंचायत गंगापुर वार्ड जवाहर नगर से आपका हम ईमेल शामिल कर चुके हैं, तो आइए आपकी पसंद पे ही सुनवाते हैं इस आखिरी गीत को।

0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो
1: कुमार सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, बड़ी बहू रिम्पी और तनुश्री गुप्ता, बोरपारा चौक बस बेरिया वेस्ट बंगाल से मुन्नी देवी शॉ, जयप्रकाश शॉ, बसंत लाव शाओ का है। नगर पंचायत गंगापुर वार्ड जवाहर नगर से आपका हम ईमेल शामिल कर चुके हैं। तो आइए आपकी पसंद पे ये सुनवाते हैं इस आखिरी गीत को।

ये है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियाँ इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात? सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने

0: मेरी बेत भूल गया क्या?
1: जी जी जी सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़ डेढ़ दूनी।
0: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ सामने।
1: जी
0: कान खोल कर सुन लो तुम सब। यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
2: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
3: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
4: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।

0: की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी
0: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
1: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
1: गिजू भाई के अनुसार
3: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए
7: 05

0: की आवाज थी। कार्यक्रम जारी रहेगा संविधान के बाद।
1: FM 100.6 पर विविध भारती वाराणसी से प्रतिदिन रात्रि 10 बजे सुनिए फिल्म संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम छाया गीत। प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। विविध भारती से प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम सखी सहेली। प्रायोजक देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये कैफी आसमी का लिखा गाना था फिल्म हीर राजा से। संगीत मदन मोहन का था। आज मदन मोहन की याद का दिन है, हम नमन करते हैं उन्हें। जयमाला कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग।

0: इनसे मिले कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मीडिया प्रोफेशनल और फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पहला भाग।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, फिल्मकार हैं, रेडियो से जुड़े हैं और दूरदर्शन के न्यूज चैनल से बतौर एडीपी अपनी सेवाएं देकर रिटायर्ड हुए हैं। आप हैं सुभाष जैन साहब। तो हम उनसे बातचीत करेंगे आज इन सभी विषयों पर। सुभाष जैन जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ
1: जी।
2: रेडियो पे इतने वर्षों के बाद आज मैं आया हूँ। वो बात दूसरी है कि रेडियो से एज ड्रामा आर्टिस्ट और एज कंपेयर मैं जुड़ा रहा हूँ, वर्षों तक जुड़ा रहा हूँ, लेकिन वर्षों के बाद आज आया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे श्रोताओं का भी आज बहुत शुक्रिया कि आज आपसे फिर बात करने का मुझे मौका मिला है।
1: जी, शुक्रिया तो आपका है कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला है। और सबसे पहले तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ा मजा आ रहा है देश में। आज इस तरह की घटनाएं सुबह से शाम तक नए नए इवेंट्स सुनने को देखने को मिल रहे हैं और रेडियो जो है अब मैं देख रहा हूँ, बीच में कुछ पहले थोड़ा सा स्लो हुआ था, आज फिर लोग जो हैं रेडियो की तरफ भाग रहे हैं और रेडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं।
1: जी, तो देखिए ना, आपने आकाशवाणी ने अपना 90 वर्ष का जो सफर है वो कितना खूबसूरती के साथ तय भी कर लिया है
2: जी।
1: और इस 90 वर्ष के सफर पर हम सभी जश्न भी मना रहे हैं।
2: जी जी जी, जी।
1: तो रेडियो से आप कैसे जुड़े और रेडियो से जो जुड़ाव था वो कैसे हुआ?
2: हुआ क्या कि मैं पहले कॉलेज में थिएटर करता था और थिएटर के साथ साथ रोहतक रेडियो स्टेशन पर जब वो पता चला कि वहां पर भी आर्टिस्टों को वो लेते हैं, उनका ऑडिशन होता है, तो हर एक की मर्जी होती है, हर एक का दिल करता है, क्योंकि हमारे लिए रेडियो उस वक्त पे बहुत बड़ी चीज थी
1: जी।
2: क्योंकि रेडियो को हम जो है सिर्फ सुनाई हमने जिंदगी भर, क्योंकि मेरे फादर जो है वो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे तो वो रेडियो की न्यूज डेली सुनते थे, तो हमें एक लगाव था और हम तो फिर हवा महल और ये यार वो बहुत सुनते थे, तो उससे हमें लगा कि हम भी कोशिश करें। और अगर शॉर्टकट बताऊं तो मैंने रेडियो स्टेशन पे ऑडिशन दिया और मैं फिर पहले बी ग्रेड मैंने पास किया, फिर बी हाई मैंने पास किया
1: ड्रामा में जी।
2: और ड्रामे के बाद फिर एज अनाउंसर भी मैंने वहां ऑडिशन पास किया और रेडियो के लिए बहुत प्ले भी मैंने लिखे।
1: तो अच्छा, लिखे भी आप?
2: हाँ, लिखे भी मैंने
1: और किए भी
2: एक्ट भी किए मैं, क्योंकि आर्टिस्ट था तो मैंने किया। तो रेडियो का मेरा

0: बहुत ही बढ़िया रहा।
1: हाँ
0: और मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं कि रेडियो हमारे पूरे देश में बहुत ही, अगर आप जाओगे अंदर, जैसे ही एंट्री लोगे रेडियो स्टेशन में,
1: जी
0: आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है।
1: जी
0: तो ऐसा है हमारा रेडियो।
1: बिल्कुल, जड़ों से जुड़ा है, हमारी जड़ों से, देश की जड़ों से जुड़ा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा है, और आज भी रेडियो ने अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं है।
0: जी
1: सर, आप रेडियो से जुड़े रहे, रेडियो से आपको इतना प्यार था, लेकिन आपने जीवन पर्यंत जो सेवाएं दी वो दूरदर्शन के लिए दी, तो ये कंट्रास्ट किस तरह से हुआ, कैसे रेडियो की दुनिया से दूरदर्शन की दुनिया में आप पहुंचे, और वहां जाकर चूंकि आप ड्रामा के आर्टिस्ट थे लेकिन आपने न्यूज चैनल को चुना और आपने पूरी सेवाएं दी, तो इसके बारे में बताइए हमें।
0: बहुत ही रोचक किस्म की कहानी है। मैं फिल्म की लाइन में चला गया था
1: अच्छा।
0: जी, और फिल्म मैंने बना ली थी। मेरी फिल्म का नाम था छन्नो, जो रीजनल लैंग्वेज में नहीं लेकिन डायलेक्ट में थी, हरियाणवी डायलेक्ट में।
1: हरियाणवी में।
0: तो उसके बाद क्योंकि सब कुछ खुद ही करना पड़ा था, एक तरह से कहा जाए तो मैं थक भी गया था, और
1: फिल्म
0: मुझे
1: बनाते हुए।
0: फिल्म बनाते हुए, तो मुझे किसी ने कहा कि आप यूपीएससी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करो। तो मुझे एक बार तो लगा कि यार, मतलब मैं कहाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं करो, आसान नहीं है। तो जब उन्होंने कहा आसान नहीं है, तो मुझे लगा अरे ये चैलेंज है, तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो खैर मैंने अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया ड्रामे में। और जब ड्रामे में सिलेक्शन हुआ तो मेरी पहली पोस्टिंग लखनऊ थी, नवाबों का शहर लखनऊ।
1: जी
0: तो वहां
1: जी
0: मेरी डायरेक्टर से बात हुई, तो डायरेक्टर ने कहा कि देखिए सुभाष जी, सिलेक्शन आपका ड्रामे में हुआ है एज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, लेकिन ड्रामे में तो हमारे दूसरे कर रहे हैं, तो आप ऐसे घूमिए कुछ दिन, उसके बाद देखते हैं। तो मैं घूमता घूमता, न्यूज रूम था वहां पर, वहां चला गया। और वहां पर जब मैंने देखा तो मेरे लिए हर चीज नई थी, क्योंकि हम ड्रामे में हर चीज बहुत प्लान से और रिहर्सल के साथ
1: बिल्कुल
0: करते हैं,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन न्यूज में रिहर्सल का टाइम नहीं होता। तो मैं बड़ा शॉर्टकट आपको बताता हूँ, 2-4 दिन मैंने देखा जाकर पैनल पर, 3-4 हमारे कैमरे होते थे, वीएम अलग होता था, ऑडियो अलग होता था, ग्राफिक्स के अलग इनपुट्स होते थे। तो कुल मिलाकर शॉर्टकट 10-15 के करीब जो है लाइव इनपुट्स यूज होते थे एक बुलेटिन में, जो लाइव जाता था।
1: क्या बात है।
0: तो मुझे बड़ा अच्छा लगता
1: हाँ
0: था।
1: हाँ
0: तो एक दिन वो जो प्रोड्यूसर करते थे वो आए नहीं, तो हमारे जो संपादक थे उन्होंने कहा कि सुभाष जी आप कीजिए। अरे मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप बुलेटिन खराब कर रहे हैं, ये मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
1: जी।
0: बोला नहीं, मैं आपको देख रहा हूँ 3-4-5 दिन से, आप बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेट्स ट्राई। मैंने कहा जिम्मेवारी आपकी होगी, अगर कुछ गलती हुई तो मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। बोला नहीं नहीं मेरी होगी, आप कीजिए। तो खैर उन्होंने मुझे कहा और मैंने जाके किया, और वो बुलेटिन, न्यूज बुलेटिन लखनऊ से वाकई बहुत अच्छा चला गया।
1: जी।
0: बस उससे मेरे न्यूज चिपक गया और वो लंबे वक्त तक चला मेरे साथ। तो मैं वैसे बीच बीच में दूरदर्शन के लिए ड्रामे करता रहा, और मैंने डांस प्रोग्राम भी किया। वो मुझे स्पेशल असाइनमेंट होती थी, जैसे सोनल मानसिंह जी का मैंने एक डांस का परफॉर्मेंस था उनका,
1: अच्छा।
0: वो मैंने स्टूडियो में किया। और मुझे जो हमारे चेयरमैन थे उन्होंने अप्रिसिएशन लेटर दिया, और वो बहुत ही बढ़िया गया। ये मैं करता रहा, लेकिन स्पेशल असाइनमेंट की मैंने,
1: जी।
0: मेन में जुड़ा रहा सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन न्यूज से।
1: जी, तो हम चूंकि बात करने वाले हैं आपकी और भी जो फील्ड से उस पर भी, लेकिन अभी बात चल रही है आपकी दूरदर्शन की, उसके न्यूज चैनल से जुड़े रहने की। सुभाष जी, आजकल टीवी चैनल से अगर हम बात करें, प्राइवेट टीवी चैनल जितने भी हैं, वो अपने को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ में या टीआरपी के चक्कर में किसी भी खबर की सच्चाई जाने बिना बड़ा चढ़ाकर बात कहते हैं और एक अजीब किस्म की सनसनी फैला देते हैं, तो इस तरह की समाचारों की सार्थकता पर सवाल तो उठने ही चाहिए, आप क्या सोचते हैं? और आप जिस चैनल पे काम करके निकले, वहां सच्चाई को कितना रखा जाता था या सच्चाई कितनी खरी उतरती थी, इस पर हम जानना चाहते हैं।
0: देखिए, अगर मैं आजकल के न्यूज चैनल की बात करूं तो मुझे, मैं पहले बहुत न्यूज देखता था,
1: जी
0: आज मैं न्यूज देखता हूं तो मुझे अंदर से दुख होता
1: जी
0: है।
1: फेड अप से हो जाते हैं हम।
0: फेड अप के अलावा मुझे लगता है कि यार ये न्यूज नहीं है, क्योंकि न्यूज का, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट भी रहा हूं,
1: जी
0: न्यूज में क्या होता है कि जो आपका एंकर होता है उसको अपने व्यू

0: यूज जो है वो 10% मैक्सिमम 15-20% देने चाहिए, यानी 20% से ज्यादा उनको अपने व्यूज नहीं देने चाहिए, और बाकी जो आपके गेस्ट होते हैं या न्यूज होती है 80% जो है वो आपको वो बतानी चाहिए, वो दिखाना चाहिए
1: जी।
0: लेकिन प्राइवेट न्यूज चैनल में बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये उल्टा हो गया है। एंकर जो है वो अपने आप को गेस्ट भी समझते हैं, एक्सपर्ट भी समझते हैं, एंकर तो होते ही हैं, तो वो पता चल रहा है 80% यानी कि 80%
1: वो खुद ही बोल लेते हैं
0: हर चीज के, और जो गेस्ट होते हैं आपके जिनको आप बुलाते हैं
1: उन्हें बोलने भी नहीं दिया जाता।
0: तो ये अनफॉर्चुनेट है लेकिन है। और जहां तक हमारे दूरदर्शन की बात रही,
1: आपने डीडी न्यूज और नेशनल न्यूज को कवर किया है।
0: मैंने डीडी न्यूज में किया और मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूं कि मैंने दूरदर्शन को छोड़ने से पहले 10 या 15 सालों तक मैं प्राइम मिनिस्टर्स की मोर देन 90% कवरेज मैं करता था।
1: क्या बात है
0: जी,
1: जी।
0: और हमारे चाहे वो नरसिम्हा राव जी हो या मनमोहन सिंह जी हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो और हमारे जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी हो, तो उनकी एक अलग चैलेंज होता है क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होता है
1: जी।
0: और आपके पास प्रेशर बहुत होता है
1: जी।
0: क्योंकि इस तरह की बड़ी रिकॉर्डिंग में आप चाहे प्रेसिडेंट की करें या प्राइम मिनिस्टर की, मैंने प्रेसिडेंट्स की बहुत रिकॉर्डिंग की और वीवीआईपीस की, वहां किसी को पता नहीं चलता है, बाहर वालों को, वहां प्रेशर ये होता है कि वहां जीरो एरर चाहिए, वहां गलती की कोई किसी तरह की गुंजाइश नहीं होती।
1: जी, बिल्कुल।
0: तो बड़ा मजा आता था लाइव वहां पे। तो अभी सोर्सेज बहुत हो गए थे हमारे पास, इतने ग्राफिक के सोर्सेज होते थे, पता चल रहा है कि फिर हम लाइव ओबी पे जाते थे और उसके बाद हमारे जो कॉरेस्पोंडेंट्स होते थे वो खड़े रहते थे चार चार पांच पांच छह छह जगह
1: लगातार सवाल जवाब करने के लिए
0: सवाल जवाब करने के लिए। और मैंने जो सबसे बड़ी एक प्रोडक्शन की, मैंने नमस्ते ट्रम्प जो अहमदाबाद से हुआ था, गांधीनगर से जब आए थे वो, तो हमने यूज किए थे तकरीबन मोर देन 100 कैमराज लाइव।
1: क्या बात है
0: जी
1: जी।
0: तो वो कवरेज जो है वो हमने की और मैं वहां एज ए प्रोड्यूसर भी था और नेचुरली उस टाइम मैं हेड ऑफ द प्रोग्राम था डीडी न्यूज और डीडी इंडिया का। तो उसमें करके एक बड़ा मजा आया। और दूरदर्शन की न्यूज में हम कभी भी ऐसा नहीं करते थे कि जिसके अंदर आपको प्रॉपर न्यूज ना मिले,
1: केवल सनसनी को फैलाना
0: कम से कम उस वक्त पे दूरदर्शन का काम नहीं था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूज लोग बाग सुनना चाहते हैं
1: और इसीलिए सुभाष जी, रेडियो की न्यूज हो या दूरदर्शन की न्यूज हो, आज भी उनकी सत्यता पर आंच नहीं आई है
0: जी।
1: आज भी उन्हें ऑथेंटिक माना जाता है और लोग रेडियो की न्यूज सुनना या दूरदर्शन की न्यूज देखना पसंद करते हैं
0: जी।

आप सुन रहे थे मीडिया प्रोफेशनल और फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी का और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं आतिश की लिखी झलकी, लो कर लो दर्शन। निर्देशक हर्षवर्धन गवई।
1: अच्छा सीताराम जी, नहीं वो बात सही है आपकी, लेकिन
2: मैं भी वही कह रहा था।
1: हाँ, आप तो सही कह रहे थे, लेकिन ये अरे ये जोगिंदर सिंह जी कैसे अस्त व्यस्त से चले जा रहे हैं?
2: लगते तो वही है। एक मिनट। अरे जोगिंदर सिंह जी, ओ जोगिंदर सिंह जी, सरदार जी,
1: ओ जी,
2: अरे क्या क्या झटका खाया है क्या आपने? कहाँ चले जा रहे हैं घबराए से?
1: ओ क्या बताऊं सीताराम जी, शुक्र करो कि मैं जिंदा हूँ।
3: क्यों, क्या हो गया?
2: क्या हो गया?
1: अरे यार, खबर तो पढ़ी होगी आपने, टीवी पर देखी और सुनी भी होगी। हमारे पड़ोस में जो 6 मंजिला इमारत बनी थी ना, अचानक गिर पड़ी।
3: ओ जी, अरे रे रे, अरे रे रे, ओ
1: हाँ जी।
3: अच्छा फिर तो उससे आपका क्या ताल्लुक?
1: ओ यार, हम लोग जहाँ चाय पीते हैं ना, मैं उसी के नीचे खड़ा चाय की दुकान से चाय पी रहा था।
2: हुआ क्या?
1: बस सिर्फ 1 मिनट पहले चाय पीकर वहाँ से बमुश्किल 100 कदम आगे बढ़ा हूँगा कि पीछे से जोर से धड़ाम की आवाज आई। मुड़कर देखा तो बिल्डिंग गिर गई थी।
2: अच्छा,
1: हाहाकार मच गई। मलबे के नीचे दबकर 30 लोगों की मौत हो गई। बस 1 मिनट का फर्क है, अगर मैं वहां से ना हटा होता ना, मैं भी ऊपर वाले के पास पहुंच गया होता।
2: बड़ी बुरी खबर है।
1: भला हो वाहिगुरु का, उसने ऐन वक्त पर मुझे बचा दिया।
2: सचमुच जाको राखे साईयां सरदार जी, मार सके ना कोई।
1: ओए जिसनू राखे रब, तो उसनू चखे कौन।
4: क्या रब ने बचा लिया है? और वो जो 30 बेगुनाह मलबे के नीचे दबकर मर गए, उन्होंने रब का क्या बिगाड़ा था?
2: लेकिन राम गोपाल जी,
4: अरे सच्चाई ये है सीताराम जी कि वो बिल्डिंग अनऑथराइज थी।
2: अच्छा,
4: उसकी कंस्ट्रक्शन में भी घटिया माल का इस्तेमाल किया गया था। सीमेंट की जगह रेत खूब ज्यादा इस्तेमाल की गई थी। जाहिर है कि अथॉरिटीज के साथ मिलकर रिश्वतखोरी की गई, मोटी मोटी रकम ऊपर से नीचे तक बहाई गई और बिल्डिंग बनने दी गई।
1: जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
2: क्या बताएं सरदार जी, क्या माहौल हो गया है। इस भ्रष्टाचार ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे माहौल का।
4: तो फिर रब ने इन भ्रष्टाचारियों को सजा क्यों नहीं दी? वो तो सब देख रहा है ना, सब जानता है ना

0: और यही नहीं है जो जोगिंदर सिंह जी के घर के बाजू में हुआ है,
1: तो
0: एक और बुरी खबर है।
1: वो क्या है?
0: एक अनऑथराइज रेस्टोरेंट में आग लगने से वहां जन्मदिन मना रही एक लड़की और उसके साथी जलकर मर गए। जानते हो 20-22 साल के 14 बच्चे मारे गए।
1: माय गॉड।
2: हाँ जी, ये सही कह रहे हैं।
1: बड़ी दिल दहलाने वाली खबर है सरदार जी।
0: अरे वहां भी तो बेचारे लोग खामखा ही मारे गए ना। अब क्यों नहीं जला डाला उन सभी गुनाहगारों को तुम्हारे रब ने? क्यों नहीं मार दिया उनको? क्या अजीब मजाक है। जो बेगुनाह हादसों में मारे जाते हैं उनके बारे में बस एक ही राय, अजी साहब उनकी तो मौत आ गई थी, अजी साहब उनकी तो किस्मत में बस इतनी ही जिंदगी लिखी थी। और जो हमारे सरदार जी जैसे बच जाते हैं उसका सारा का सारा क्रेडिट भगवान को चला जाता है।
1: लेकिन यही तो कहा जाता
0: अरे
1: है।
0: अरे क्या कहा जाता है, आप सीताराम जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप भगवान को क्रेडिट दे देते हैं, कभी रब को क्रेडिट दे देते हैं। एक और कमाल की सोच है, कमाल का विश्वास है। जो किया वो रब ने किया, जो दिया वो रब ने दिया। अरे साहब देखिए, हम भी पैदा हुए हैं, अपने माँ बाप की औलाद हैं, हमारी भी औलादे हैं, जिसको देखो वो सारा क्रेडिट रब को दिया जा रहा है। सब क्या उसी की मेहरबानी है? बताइए सरदार जी, चुप क्यों हैं? क्या गलत कह रहा हूं मैं?
2: आप तो नास्तिक हो, आप तो ऐसा ही कहेंगे।
0: अरे सीताराम जी, भगवान ईश्वर गॉड रब सब एक विश्वास है जो आस्था बन गया है। गॉड यानी रब ने इंसान को बनाया, बनाया या नहीं बनाया ये तो नहीं जानता मैं, लेकिन ये कभी ना झुटलाने वाला सच है कि ये इंसान है जिसने रब को बनाया। इंसान के बिना रब को जानता ही कौन है, बताइए आप। ये जो जानवर हैं, ये भी तो रब के बनाए हुए हैं ना। ये किसी भी धर्म स्थान के अंदर चले जाते हैं, आराम से लघु शंका से निवृत्त हो जाते हैं, गोबर कर देते हैं। भगवान होता तो ऐसा करते ये कभी?
3: यही तो फर्क है नास्तिक जी, इंसान और जानवर में। जानवर को दिमाग नहीं दिया भगवान ने, इंसान को दिया है सोचने और समझने का भगवान, जिसे तुम ईश्वर कहते हो, रब कहते हो। वो मेरा दोस्त है, मेरे साथ क्रिकेट भी खेलता है और शतरंज भी खेलता है।
0: फेंकू चंद है ये हमारा दोस्त जो है ना, ये भगवान दास नहीं, फेंकू चंद है, फेंक रहा है। अरे भला जो दिखता ही नहीं उसकी हकीकत क्या? ढकोसला है सब, रब गॉड। अरे तुम दिख रहे हो, मैं दिख रहा हूं, सीताराम जी दिख रहे हैं, सरदार जी दिख रहे हैं, कहां है तेरा रब बता दो, कहां? दिखा जरा मुझे, दिखा भाई।
3: वो सर्वव्यापक है ना, तुम्हारे सामने इसी वक्त मौजूद है, मगर तुम जैसे नास्तिक को दिखाई नहीं देगा।
0: चलो मैं मान लेता हूं मैं नास्तिक हूं, ये हमारे सरदार जी तो आस्तिक है ना, ये सीताराम जी तो आस्तिक है ना। भैया आपको दिख रहा है? तुमको दिख रहा है?
1: नहीं
0: दिख रहा है ना?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: दो अब जवाब है, कोई जवाब?
3: ये हवा है ना, इसी में हम सब सांस ले रहे हैं, तुम भी। क्या दिखाई देती है किसी को? जिंदगी क्या है? जब तक सांस लेते रहोगे जिंदा रहोगे, सांस बंद जिंदगी खत्म। मैं भगवान का दास हूं इसीलिए वो मेरा दोस्त है। मैं तो जब भी बुलाऊं वो ओब्लाइज करता है, दर्शन देने आ जाता है।
1: क्या बात कर रहे हैं भगवान दास, हमें भी दर्शन करवा दो भाई।
2: ओ हाँ यार, सानू भी करवा दे दर्शन।
3: चलो ठीक है, तो इस संडे को आ जाओ मेरे घर पे, मैं विनती करके बुला लूंगा रब जी को, आप दर्शन कर लीजिए।
1: ठीक है जी, आ जाएंगे। क्यों सरदार जी?
2: बिल्कुल आ जाएंगे जी।
0: भैया मुझे तो बख्श दो।
1: क्या बात कर रहे हो,
0: मुझे
1: चलिए,
0: नहीं।
1: आप भी चलिए।
0: नहीं,
3: ना ही आओ तो अच्छा है।
0: हाँ,
3: भगवान की भी यही इच्छा है,
0: बस आप लोग दर्शन कर लो जी।
3: तो आ जाना आप दोनों, हाँ, मेरे घर।
2: अच्छा जी, सच लिया का हाल।
1: राम राम भगवान दास, जरूर आएंगे।
2: सत श्री अकाल जी।
1: भाई भगवान दास, राम राम।
3: आइए आइए, आ गए आप, मगर ये क्या साथ में इतनी भीड़ ले आए?
1: अब क्या करें, जिसने भी सुना थोड़ा चला आया, हमें भी दर्शन करवा दो, हमें भी दर्शन करने हैं, साथ ले चलो। चलो भाई,
3: ओके, ऐसा करते हैं, वहाँ दूर एक लाइन में खड़े हो जाओ सब लोग, एक एक करके आना।
1: ठीक है,
3: अंदर कमरे में भगवान जी हाजिर है, कर लो दर्शन।
1: सरदार जी आप एक काम करो, आप लाइन लगवाओ, सबसे पहले मैं दर्शन करूंगा जी, और दूसरी बारी आपकी आ जाएगी, लाइन लगवाओ।
2: ओ अच्छा जी,

0: ठीक है जी, मैं जाता हूँ लाइन लगवाता हूँ, छेती छेती आप भी आ जाना, पहले दर्शन मेरे होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाओ लाइन लगवाओ। तो भगवान दास जी, अब मैं जाऊं भीतर दर्शन करने?
2: हाँ हाँ, मगर एक शर्त है।
1: शर्त? वर्त यहाँ पर
2: भगवान सिर्फ उसी को दिखाई देंगे जिसने कभी झूठ ना बोला हो।
1: जी झूठ से मेरा क्या नाता, कोसों तक कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो केवल सच ही बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ।
2: जिसने पाप ना किया हो।
1: ओहो हो, मैं तो पुण्य का भागी हूँ, और पुण्य भी ऐसे करता हूँ कि इस हाथ का उस हाथ को पता नहीं चलता।
2: और जिसने किसी को धोखा ना दिया।
1: हम क्यों धोखा वोखा देंगे, और भी कोई शर्तें हैं आपकी?
2: जिसने रिश्वत ना ली हो ना दी हो।
1: रिश्वत से अपना दूर दूर का कोई नाता ही नहीं है।
2: किसी लड़की पर बुरी नजर ना डाली हो।
1: हम क्यों नजर डालेंगे, आप बताइए कितनी शर्तें और बाकी हैं आपकी?
2: और जिसने किसी पराई स्त्री को कभी ताका झांका ना हो।
1: अरे भाई क्यों जागेंगे ताकेंगे किसी पराई स्त्री को, और भी कोई शर्त है? भीतर जाऊं दर्शन करने?
2: जाओ अंदर जाओ, दर्शन कर लो।
1: ठीक है, ये चला।
2: क्यों जी सीताराम जी, मिल लिए भगवान को, हो गए दर्शन रब के?
1: दर्शन? अरे भगवान दास जी, दर्शन की बात करते हो? हो गए हो गए हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। विराट प्रभु का स्वरूप, ओ हो हो हो, आत्मा प्रसन्न हो गई, क्या साक्षात दर्शन दिए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु।
2: इसी तरह सरदार जी ने भी दर्शन लिए, और जो भी आया था सभी ने यही कहा कि उसे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों हंस रहा हूं। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि ऊपर बैठा भगवान भी हंस रहा है।
3: लो कर लो दर्शन। अभी आप सुन रहे थे आतिश की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे हर्षवर्धन गवई। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अमरकांत दुबे, अशोक सोनावने, राजेंद्र त्रिपाठी और जयंत पात्रिकर। ये थी विविध भारती मुंबई की प्रस्तुति।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: इनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे चित्रलोक।

बर्फी फिल्म का गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल प्रीतम की तर्ज थी, रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजें प्रसून जोशी के बोल, संगीत ए आर रहमान का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रूपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। आईसीसी क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
2: पार्टनरशिप विद यूके इज टेकिंग मेनी मोर डायमेंशन।
1: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रूपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। नई

संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश

0: बाबू विजय चिंटकायला और बाश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा की देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
1: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे

0: मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रूपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

0: कानपुरी का लिखा बप्पी लहरी का सोरबत किया ये जख्मी फिल्म का गाना था।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन लाया, कौन लाया।
3: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
4: परेशान हूँ मैं।
3: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
3: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
5: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
3: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कौन मिलो, आन मिलो, शाम सवरे।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर...

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

विद्वान कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

आने के बाद मदन मोहन, श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत।

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे

0: हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम। जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे। तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं, लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
1: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है ये, उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1,000 रुपए मांगना चाहता हूं, इस खबर के लिए आप मुझे 1,000 रुपए दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, मैं देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहां, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूं। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
0: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ एकदम सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे काम छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ तेज चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माताजी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए। उन्होंने कहा मदन जी, मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नजरों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब प्रयोग किया।

सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
2: इसका सोल्यूशन
1: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है।
1: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। मैं हूं विधि जैन। रूठना मनाना, ये तो प्यार का ही रूप है। शायद वो रूठकर हक जताते हैं और हम मनाकर प्रेम। वो रूठते हैं तो उदास नहीं, प्यारे लगते हैं, और हम मनाते हैं तो बेसहारा लगते हैं। और सहारा देने को वो मान भी जाते हैं और फिर प्रेम अपना कुछ यूं दिखाते हैं।

मैं यूं खामोशियों की ओट में खुद को छुपाइए, मेरी आंखों की बेचैनी जरा आकर पड़ जाइए। खता मुझसे हुई होगी मगर इतनी सजा कैसी, गिले शिकवे सभी रखिए मगर कुछ तो सुनाइए।

हम जानते हैं वो दूर जा रहे हैं, पर मन से नहीं, बस इतरा रहे हैं। बुरा तो लगा था हमारी बातों का उन्हें, पर अब लगता है बस यूं ही वो भाव खा रहे हैं। इसीलिए हमारी कलम ने लिखा कि चलो अब मुस्कुरा दो, ये गुस्सा छोड़ भी दो, मेरी खातिर अपनी जिद का रिश्ता तोड़ भी दो। जानती हूं ये रूठना बस बहाना है तुम्हारा, मुझसे और थोड़ा प्यार जताना है तुम्हारा।

समझे अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चलें साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: रहना किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के

0: टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल नेचुरल है।
1: इसका सोल्यूशन
0: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
1: नेचुरल है।
0: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

अंतराल के बाद पुनः स्वागत है कार्यक्रम छाया गीत में। हम बात कर रहे हैं रूठने की और मनाने की। और अगर प्रेयसी रूठ जाए और कारण पता ना हो तो? पर मनाना तो जरूरी होता है ना, और मनाने के लिए थोड़ी सी जरूरत तो की जा सकती है और थोड़ी सी मेहनत भी। तो कहती है कलम की, तेरी खामोशियों में भी सदाएं सुन रहा हूं मैं, तेरे रुखसार पर ठहरी दुआएं चुन रहा हूं मैं, जो तेरी आंखें बरसों से कह ना पाई मुझसे, उन्हीं अनकही बातों के अफसाने बुन रहा हूं मैं।

किसी के रूठने से दिल तड़प जाता है, उसको मनाने के लिए भी दिल रह ही जाता है। रूठने मनाने के सिलसिले में कई सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और प्यार और मुस्कुराता है। कभी कभी रूठे दिल को देखकर तड़पन और मुस्कुराते देखकर मन की खुशी दोनों ही बड़ी खूबसूरत होती है। कहती है कलम कि मैं आपके नाम की खुशबू लिए फिरती हूँ सांसों में, मेरे एहसास की दुनिया में फिर से मुस्कुराइए। न जीत मेरी न आपकी मोहब्बत की हो बस, चलिए अब मान भी जाइए और मुझे गले लगाइए।

ये रूठना इजाजत देता है और करीब आने की, और ये मनाना इजाजत देता है फिर से मुस्कुराने की। ये रूठने मनाने के, शिकवे के, शिकायतों के, इन पर्दों को धीरे धीरे हटाकर ही प्रेम का सुंदर रूप दिखाई देता है। रूठना मनाना, इसकी भी एक हद होनी चाहिए। एक हद के बाद रूठे हुए को मान भी जाना चाहिए। और बस ऐसे ही जो रूठा है वो रूठ तो सकता है, यह उसका अधिकार है, पर मानना यह भी उसके काम में ही आता है। तो रूठिए पर जल्दी मान जाइए। इसीलिए तो कहा है कलम ने, ये जो रूठे हैं लब आपके, मौसम भी उदास है, बहारों की तरह फिर से मेरे आंगन में आइए। मैं अपने हर तर्क को अब प्रेम में बदल दूंगी, आप बस एक बार दिल से मुझे अपनाइए। नजर झुक झुक के कहती है बहुत कुछ आज भी, लेकिन मेरे अल्फाज से पहले मेरी धड़कन को पाइए। जो बीती बात थी उसको हवाओं में बिखरने दें, नए सपनों की चादर फिर मोहब्बत पर बिछाइए।

0: अब अगर रूठे तो जल्दी मान जाना, अगर शिकवे हो तो जल्दी से मिटा देना, क्योंकि जीवन मुस्कुराने के लिए है और साथ बिताने के लिए। रूठना मनाना एक पल का हो तो अच्छा है, अगर लंबा चले तो बड़ा दुखदाई। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रूठे को मनाते रहिए, अगर कोई मनाए तो जल्दी से मानते रहिए। छाया गीत कार्यक्रम में आज इतना ही। अब आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल नेचुरल है,
2: इसका सोल्यूशन
1: वो भी नेचुरल है। वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार

0: अगर लंबा चले तो बड़ा दुखदाई। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रूठे को मनाते रहिए, अगर कोई मनाए तो जल्दी से मानते रहिए। छाया गीत कार्यक्रम में आज इतना ही। अब आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
2: इसका सोल्यूशन
1: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैक हेड्स दूर रखने में मदद करे।
2: वाओ,
1: सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है।
1: नेचुरल ब्यूटी वॉश।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

मुझे याद कर कभी श्रद्धा से झुक जाए अगर तुम्हारा सर, तो मान लेना तुम्हारे भीतर ही है मेरा होना। कभी मेरी राह पर चलते हुए चोट खाओ, रुक जाओ फिर भी चलो, तो मान लेना मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:25 पर सुनिए बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ।

प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

0: दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश अब नए अवतार में, यानी फिर एक बार मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। जी हाँ, डीडी फ्री डिश में अब हैं 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, 51 एजुकेशनल यानी शैक्षिक चैनल्स, साथ ही 48 रेडियो चैनल्स भी। बस एक बार सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई मासिक या अतिरिक्त खर्च नहीं। डिजिटल क्रांति की दिशा में एक और कदम बढ़ाइए, डीडी फ्री डिश घर लाइए। जी हाँ, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर डीडी फ्री डिश का नया अवतार, यानी मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मुझे याद कर कभी श्रद्धा से झुक जाए अगर तुम्हारा सर, तो मान लेना तुम्हारे भीतर ही है मेरा होना। कभी मेरी राह पर चलते हुए चोट खाओ, रुक

0: हमने तो शराब से अपनी आजादी ली, ऐसा सारी दुनिया कहती है। तब मैं कहूंगा कि जो शराफत से चीज मिली है उस चीज को रखने के लिए भी हमारे शरीफ होना चाहिए।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:25 पर सुनिए बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन के ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकयाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. Commerce and Industry Minister Piyush

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स